किशोरदा की आवाज, आरडी बर्मन का म्यूजिक और गुलशन बावरा के बोल, कुछ गाने जो है ना वो 5 मिनट में ही हमारे दिल की सारी बातें जाहिर कर देते हैं, और जब शब्द ना मिले तो बस गाने प्ले करके सुना देना चाहिए, वैसे भी समझने वाले समझ जाते हैं। खैर, सुबह के 5:31 हो चुके हैं, आकाशवाणी के दिल्ली का FM गोल्ड चैनल पर मैं हूँ पंकज, आपके साथ शो का नाम है भोर सुहानी, और जून जुलाई की गर्मी बस सह लीजिए, फिर तो अगस्त में सावन और त्योहार शुरू हो जाते हैं। इस गाने के बाद आपसे

ये खूबसूरत सा गाना था फ्रॉम द मूवी साज। और जून की गर्मी में आम तो देखिए अभी बाजार में तो बहुत आए हुए हैं और खा भी रहे हैं लोग, और पूरा बाजार जो है वो आमों से सजा हुआ है। और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में आमों की बड़ी प्रशंसा की थी, और यहाँ तक कि मिर्जा गालिब भी ना आम खाने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने आम पर एक फारसी में प्रसिद्ध मसनवी यानी आम की तारीफ दर सिफत अबाह में लिखा है कि आम में बस दो खूबियाँ होनी चाहिए, एक तो वो बहुत मीठे हों और दूसरा बहुत सारे हों। तो गर्मी के फलों और शरबतों का आप लुत्फ लीजिए। बाकी अगले घंटे सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे अर्पण बबीता शर्मा के साथ, और इस गाने के साथ ही मुझे यानी पंकज को दीजिए बहुत सुहानी से अनुमति। दोबारा जल्दी मिलूंगा, सुनते रहिए 24 घंटे हर दिन आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और आम जैसे मीठे मीठे गानों का मजा लीजिए। नमस्ते।

0: सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज

0: कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 4-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit. The discussions will be focused on exploring avenues of cooperation in the areas of trade, investment, energy, renewable energy, healthcare, and pharmaceutical. External Affairs Ministry said that the Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector, and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. It said that the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. Senior Congress leader D.K. Shivakumar will be sworn in as the Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavar Chand Gehlot will administer him the oath of office and secrecy at Lok Bhavan in Bengaluru at 4 p.m. Mr. Shivakumar's appointment comes days after Mr. Siddaramaiah stepped down as Chief Minister, paving the way for his deputy to take over the top post. The development marks the culmination

All right, folks. So, hi, hello, and good morning. In fact, namaste, hello, adab, dosto. And you have tuned to this very wonderful station, Rainbow FM 101.9. And this is your radio man welcoming everybody to this Wednesday morning. So, morning to midday musical journey continues here on Namaste, hello, adab. So, between 10 and 1, we will celebrate melodies that bridge cultures, stories, and spark memories, rhythms that brighten your day. So whether you're at work or at home or on the move, so let's make these arts unforgettable with music that speaks every language of the heart. है ना, बहुत ही खास दिन. जी हाँ दोस्तों, आज 10 बजे से 1 बजे तक हम लेकर आएंगे आपके लिए दिल को छू लेने वाले गाने, कहानियाँ, यादों का ताज़ा जो सफ़र है वो भी हम आपको हमारे साथ लिए चलते हैं. आज का दिन आपके लिए ख़ास बनाते हैं, तो साथ ही आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफ़र सुरों का और जज्बात का बहुत ही अजीम संगम है. लेट मी ऑल्सो टेल यू, टुडे इज़ एन एक्स्ट्रा स्पेशल डे बिकॉज टुडे इज़ वर्ल्ड बाईसाइकिल डे. जैसे स्वाति ने अपने तेलुगु शो में बताया, फ्रॉम 10 AM टू 1 PM वी विल ट्राई टू पेडल थ्रू द मेलोडीज. जी हाँ, जैसे साइकिल की पैडल होते हैं, उसी तरह हम एक के बाद एक आहिस्ता आहिस्ता आपके जो ख़ास दिन है उसको यादगार बनाएंगे. एंड वी विल सेलिब्रेट द फ्रीडम, द जर्नी, द साइकिल, द राउंड शेप टायर्स. बहुत ही ख़ास दिन है, तो आप हमारे साथ बल्कि 1 बजे से 2 बजे तक जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका साइकिल का सफ़र कैसा रहा, और दरमियान में आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं. सो द फ्रीडम जर्नी, जॉय ऑफ सिंपल लिविंग, जस्ट लाइक बाईसाइकिल कनेक्ट्स टू द रोड, म्यूजिक कनेक्ट्स टू ईच अदर. सो फासन योर सीट बेल्ट. साइकिल पे सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और सो लेट्स हैव द बेटर येट, हॉप योर साइकिल एंड लेट्स रोल इट टुडे. तो हम शुरुआत करते हैं. This is a song from this Queen's greatest hit called The Bicycle Race. And the mercury is rising, so the bicycle tires are just going to, fasten. There we go.

दोस्तों, इन गानों के माध्यम से हम साइकिल की सवारी को एक बार फिर से याद कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, और इसी वजह से आज हमने ये साइकिल वाले गाने आपके लिए प्रस्तुत किए, बल्कि करने वाले हैं। कुछ और हमारे पास प्लेलिस्ट में शामिल है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और बने रहिए। अगर आप देखेंगे, माइकल है तो साइकिल है, फ्रॉम दिस मूवी कॉल्ड बेवकूफ़। जो फिल्म आई थी वो 1960 की प्लेफुल विटी थी, और इसमें गाना भी काफ़ी विटी रहा है। किशोर गुदा और आशा भोंसले ने मिलकर इसे गाया और इसे कंपोज किया SD बर्मन साहब ने, जिसके बोल लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने। ये एक लाइट हार्टेड मेटाफोरिकल सॉन्ग है, जहां पर बाइसाइकिल बिकम्स अ यूथफुल रोमांस। उस जमाने में ये कहा जाता था कि अगर आपको इश्क लड़ाना है तो साहब आपके पास बाइसाइकिल होनी चाहिए, जिस तरह आज मोटर बाइक है या फिर कार है। उस जमाने में कम से कम यूथफुल रोमांस हुआ करता था। लोग जहेज में, जो कि जहेज एक खराब प्रथा है, गलत है, लेकिन उस ज़माने में बाईसाइकिल की डिमांड किया करते थे जितने भी ब्राइड ग्रूम्स थे। तो बहुत ही शानदार सा नगमा आपने सुना, बहुत दिलचस्प ये नगमा है, और रोमांस है, ह्यूमर है, साथ ही साथ ज़िंदगी की जो सिंप्लिसिटी है उसको परफेक्ट दर्शाया गया है। आज क्योंकि वर्ल्ड बाईसाइकिल डे थीम है, इस वजह से हम ये चुनिंदा नगमे आप तक लेकर आए हैं। तो माइकल है तो साइकिल है, माइकल जो नहीं साइकिल भी नहीं। देखा आपने, ये जो हाईलाइट करता है ना कि लव कंपेनियनशिप्स आर इनसेपरेबल मच लाइक द राइडर एंड द बाइसाइकिल। साइकिल और जो

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: ऑलराइट दोस्तों, आपने ये बेहतरीन सा नगमा सुना। फिल्म है पेइंग गेस्ट और

माना है, माना जनाब ने पुकारा नहीं। जी हाँ, अगर आज के ज़माने में ये फिल्म रिलीज़ हो तो शायद इसे स्टॉकिंग भी कह सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में इतनी खूबसूरत तरीके से इसे पिक्चराइज किया गया था कि बयान नहीं कर सकते। आप वापस जाकर इसको एक फुटेज के तौर पर देख सकते हैं। पूरा नगमा बहुत ही अच्छा है। स्टूडियोज़ में इसकी शूटिंग हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुबोध मुखर्जी ने और लिखा था नासिर हुसैन ने, और स्टोरी बहुत ही कामयाब रही। उस ज़माने के बेहतरीन एक्टर्स जो थे वो थे देव आनंद और नूतन और शोभा खोटे, और इसकी मौसीकी दी थी SD बर्मन साहब ने, और इतने काबिल तारीफ नगमे थे कि मैं क्या कहूँ कि अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। इस फिल्म में तकरीबन आपको देखने को मिलेंगे कि एक

0: Absolutely, all sorts of uncertainty and volatilities and a set of turbulence can happen in life, and that's where these songs are so real and makes life so very good. Riding a bicycle has become a luxury now because there are no dedicated tracks on which that you can do it, except in Hyderabad that there is 11 km stretch near, Nanakramgoda, where there is also a shade. You can do that. You can even rent a bike for a merely, I think, 199 rupees. But this song is particularly talking about the philosophy of life, and that tells you a lot about it. है ना दिल को छू लेने वाले ये खास नगमे जो कि बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, जो गलियों में हैदराबाद की गली और नुक्कड़ों पर आप इन साइकिल की ट्रायल्स लिया करते थे. ग्लोबल साइकिलिंग के मैराथन्स भी होते हैं. आजकल साइकिल में एक किस्म का जॉय है, एक किस्म की हेल्थ है, सस्टेनेबिलिटी है, और आज हम इसी जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए एक पैडल से दूसरे पैडल की तरफ, जिस तरह पैडल मारने से साइकिल आगे बढ़ती है, उसी तरह कुछ देर रुक जाने से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना. सो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे रिमाइंड्स अस टू बी हम्बल, एंड एक साइकिल को आप एक दोस्त की तरह देख सकते हैं, एक वो दोस्त जो हमेशा आपके साथ है, जो कि स्कूल से हो या फिर फिटनेस की गलियों में हो. साइकिलिंग इज ऑल्सो वेरी इको फ्रेंडली. तो आइए आपको लिए चलते हैं हमारे एक दूसरे नगमे की तरफ, जो कि बहुत पुराना है, माजी का गाना है, और मुझे उम्मीद है कि ये गाना आपको पसंद आएगा.
1: ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल

0: ऑलराइट साथियों, आपको सुन के काफी हैरानी हुई होगी कि साइकिल का जो चक्कर है वो आपको इश्क में भी गिरफ्तार कर सकता है। और शायद इसी वजह से ये गाने में इतनी ज्यादा एक फन लविंग बीट नजर आएगी। ये फिल्म थी अकेले अकेली मत जायो, यानी कि ये ऐसी फिल्म थी जो 1963 के दौर में काफ़ी मैं कहूँगा कि रेवोल्यूशनाइज मानी जाती थी, क्योंकि डोंट गो अलोन और लड़कियों को लेकर जो ज़्यादातर चीज़ें जुड़ी रहती हैं वो ऐसी रहती हैं कि आप अकेले क्यों जा रहे हो, बिकॉज सेफ्टी सिक्योरिटी आर द कंसर्न्स ऑफ इट। सडनली वुमेन एम्पावरमेंट हैज़ बिकम आई थिंक प्लेटोनिक विथ जस्ट वुमेन ओनिंग अ बाइसाइकिल। Owning a bicycle can also give access to education. She can happily go to the school, which is located far away, maybe some miles, some kilometers, and she can also get employed. Look at that. And a lot of political parties have also made their agendas to provide bicycles. So bicycle is not just for sustainability, but it's also for lots of eco-friendliness and fun, undoubtedly. So Rajendra Kumar और मीना कुमारी पर ये फिल्म थी, लेकिन ये गाना जो था वो आगा और मीना कुमारी पर आधारित था। और इस गाने में मुख्य कलाकार जो थे वो थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले, जिसकी मौसिकी दी मदन मोहन ने। फिल्म बड़ी शानदार रही, जिसे नंदलाल जसवंत लाल ने डायरेक्ट किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से सुनते हैं एक और गाना जो साइकिल पर नहीं है मबनी, लेकिन ऑलमोस्ट सड़कों पर जब साइकिल हो या फिर कार तो हॉर्न तो बजता ही है ना जनाब।
1: बाजू बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे बम बम बम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

और आज साथियों आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सेट से ट्यून किया है हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूँ आपका रेडियो मैन। और हमारे पास फिलहाल 7 मिनट हैं, तो हम इन 7 मिनटों को बहुत ही अच्छे अंदाज में स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। और साइकिल को लेकर जो रोमांस है, जो फन है, जो लविंग कॉन्सेप्ट है, वो बॉलीवुड ने काफ़ी इनकैश किया था, साथ ही साथ वेस्टर्न म्यूज़िक ने भी। वेस्टर्न म्यूज़िक में इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और साइंटिफिक प्रोग्रेशन के बावजूद भी साइकिल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। सो वर्ल्ड साइकिल डे ऑल्सो रिमाइंड अस दैट वी आर सपोज टू बी हम्बल, उसे एक दोस्त की तरह देखना चाहिए। और जब हम गाड़ी चलाते हैं, साइकिल जब चलाते हैं, तो शायद वो हमारी पेस के बराबर है। लाइफ की जो पेस है वो ज़्यादा जिप जैप जूम वाली नहीं है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स दैट यू शुड बी राइडिंग बाईसाइकिल। अगर बचपन में आपने नहीं चलाई है तो मुझे लगता है कि दैट यू हैव मिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, एंड दिस इज़ रियली रियली प्रेशियस मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो जैसे हैदराबाद के नेकलेस रोड पर आप कुछ कम्यूनिटी बनाकर सुबह सुबह के वक्त आप जा सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, और द ब्रीज, द रिदम, द सिटीस्केप एंड एवरीथिंग इज सो रियली मार्वलस। So you can create some community who are quite interested in riding bicycles. Do you have one? Take the help of technology, create some WhatsApp group, and these WhatsApp groups can actually connect you to people across. So on that note,

ऑलराइट साथियों, चांदी की साइकिल सोने की सीट का जो गाना बैकग्राउंड में चल रहा है आपको एक बार फिर से याद दिला दे, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक 11 बजे के लिए और वो रहेगा हमारे न्यूज़ हेडलाइंस के लिए। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द न्यूज़ हेडलाइंस इन तेलुगु।

All right, तो वही BG यानी कि background music और वही overlay and underlay of the radio bands tune and you have tuned to this wonderful station Akashwani Hyderabad on FM 101.9 megahertz. दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इस शो में हम एक ऐसी शख्सियत को खराज अकीदत होमेज पे करेंगे जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी मौसिकी को बेपनाह मोहब्बत लगन और मैं कहूँगा निष्ठा के साथ अपना जीवन दिया है एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर

0: दोस्तों, आपने बेहतरीन सा गाना सुना और मुझे उम्मीद है कि आपको ये गाना ड्यूट गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हमने ये गाना आपके लिए ख़ास तौर पर चुना और आपके लिए पेश किया। आज हम एक ऐसे आर्टिस्ट को अपनी खराज अकीदत, जिसे पेइंग ड्यू रेस्पेक्ट एंड आल्सो पेइंग ट्रिब्यूट्स एंड होमेज टू दिस वेरी फाइनेस्ट सिंगर ऑफ ऑल टाइम, सुमन कल्याणपुर जी के बारे में बात करेंगे। बॉर्न एज सुमन हिम्मादी, जो कि उनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1937 में, एंड शी जस्ट डाइड 3 डेज अगो 31 मई 2026, वॉज अ लेजेंडरी इंडियन प्लेबैक सिंगर हु इज मोस्ट नोटेबली नोन इन दी फील्ड ऑफ हिंदी सिनेमा। हिंदुस्तानी सिनेमा हमेशा उन्हें हर बार याद रखेगा। शी ऑल्सो रिकॉर्डेड सॉन्ग्स इन सेवरल अदर लैंग्वेजेस इन सेवरल अदर मूवीज, जैसे कि उन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा के अलावा बंगाली में, मराठी में, आसामीज में, गुजराती, कन्नड़ा और अंगिका, भोजपुरी, राजस्थानी, उड़िया और पंजाबी जबानों में अपना बेहद और मकबूल तरीन आवाज़ दी। हर वॉइस हैज़ ऑफन बीन मिस्टेकन दैट ऑफ लता मंगेशकर। काफ़ी लोगों को ये लगता था कि ये लता मंगेशकर की ही कोई बहन है, या फिर उनकी ही आवाज़ है, या उनकी कोई डुप्लीकेट है। तो आवाज़ का रेप्लिका जब होता है ना, तो वॉइस क्लोनिंग कह सकते हैं। अभी तो एआई के ज़माने में वॉइस क्लोनिंग आ गई है, लेकिन उस ज़माने में नहीं थी। बट शी हैज़ क्रिएटेड हर ओन मार्क, द टोन, टेक्सचर, एवरीथिंग वॉज क्वाइट सिमिलर। सो शी इज़ हैड स्टार्टेड हर करियर इन द 50s, एंड देन शी वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स फॉर एटलीस्ट 2 डिकेड्स। उसके बाद भी उन्होंने अपना जो सफ़र है वो जारी रखा, बट स्पेशली उनका 60s और 70s का एरा इज़ मोर रिमेंबरिंग। तो वी विल टेक सम रेमिनिसेंसेस एंड ऑल्सो वी विल ट्राई एंड प्लंज इन टू हर यू नो अर्ली लाइफ एंड देन कंट्रीब्यूशन टू दी हिंदुस्तानी सिनेमा, क्योंकि वहीं से हम चुन कर लाए हैं उनके ये गीत। तो हम सुनेंगे दूसरे अन्य गीत भी, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सो स्टे ट्यून एंड स्टे अलाइव, यू हैव ट्यून टू दिस वंडरफुल स्टेशन एंड द शो इज कॉल्ड नमस्ते हेलो आदाब। माय नेम इज रेडियो मैन।
1: తరం మారింది శ్రీ చైతన్య సిద్ధమైంది।

Well, these are the eternal songs that we are listening here on FM Rainbow 101.9, Rainbow Adds Colors to Life. जी हाँ दोस्तों, सुमन कल्याणपुर की जिंदगी के ताल्लुक हम बात कर रहे हैं, उनके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। सुमन कल्याणपुर जी का जो जन्म हुआ है वो सुमन हिमाड़ी के नाम से हुआ है, 28 जनवरी 1937, वो भी ढाका में। अब उस जमाने में तो ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। सुमन कल्याणपुर के जो फादर थे शंकर राव हिमादी, बेसिकली हेल फ्रॉम ए सारस्वत ब्राह्मण फैमिली बिलोंगिंग टू हिमादी, अ विलेज इन कुंडापुर तालुक ऑफ उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। ही सर्व्ड ऑन अ पोस्ट इन द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड वॉज पोस्टेड इन ढाका। इसी वजह से सुमन कल्याणपुर जी का वहाँ पर जन्म हुआ। And they stayed there for a very long period. Apart from father and mother, mother name is Sita Hemadi, there were five daughters and one son in the family. Aur Suman Kalyanpur, jo ke eldest daughter rahi hain puro mein, yani ki 6 members ki jo family thi, unki 4 behne aur ek bhai, jumla milakar 6 log the. And in 1943, her family moved to Mumbai, where she received her musical training. यहीं से उनकी जो मौसिकी का जो सफ़र है उसकी शुरुआत होती है। She had always been interested in performing art, जैसे कि painting होने दीजिए या फिर मौसिकी या फिर music. So after completing schooling from Mumbai, basically she completed her schooling from St. Columbia's High School. काफ़ी reputation वाला ये school माना जाता था, उसमें admission मिलना इतना आसान नहीं था, but she got admission in the prestigious Sir J.J. School of Arts for further studies in painting. तो उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की इस स्कूल से, फिर उसके बाद वो जे जे फाइन आर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया। एंड साइमल्टेनियसली शी स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल वोकल फ्रॉम पुणेस प्रभात फिल्म्स म्यूजिक डायरेक्टर एंड क्लोज फैमिली फ्रेंड दैट इज़ पंडित केशवराव भोले। केशवराव भोले साहब से उनकी जो मौसिकी की तालीम वो जारी रही। एंड एक सूत्रों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द रिलायबल सोर्सेस, यू कैन से दैट सुमन इनिशियली यू नो सिंगिंग वॉज जस्ट फॉर हॉबी के लिए वो गाना गाती थी। देन बट ग्रेजुअली इंटरेस्टेड इन टू डीप म्यूजिक एंड ऑल्सो इंक्रीज हर लर्निंग सो प्रोफेशनली। फिर उसके बाद उनके एक और उस्ताद अपनी ज़िंदगी में दाखिल हुए, वो थे उस्ताद अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग। सो सुमन की जो अपनी सिस्टर थी वो श्यामा हिमादी थी, वो भी एक सिंगर रही। तो इनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो हम फिर से आपके सामने लेकर आएंगे, और इस मौसिकी की तालीम तरबियत के बाद वो कैसे फिल्मों और दूसरे स्टेजेस पर नज़र आईं उस पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन

0: पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद एक और नगमा आपके लिए। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और जुड़िए। ये है आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी हैदराबाद का FM रेनबो 101.9 के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, और मैं हूं आपका रेडियो मैन, शो का नाम है नमस्ते हेलो आदा।
1: तरम मारिंदी श्री चैतन्य सिद्धमैंदी।

0: बहुत ही शानदार बच्चों वाला नगमा आपने अभी सुना, और आपको लगेगा कि इतनी मासूम सी आवाज़ है, वो बच्चों की भी आवाज़ें काफ़ी आसानी के साथ निकाल लेती थी। सुमन कल्याणपुर की ज़िंदगी के ताल्लुक से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे शो में नमस्ते लो आदाब में, और मैं हूँ आपका रेडियो मैन। तो ये फिल्म आई थी अंदाज़। अंदाज़ एक अपने खुद का निराला अंदाज़ लेकर आई थी, ना सिर्फ वहाँ के आर्टिस्ट बल्कि इसके जो गायक थे मोहम्मद रफ़ी होने दीजिए या सुमन कल्याणपुर, दोनों की एक मुनफरिद यूनिक आइडेंटिटी और आवाज़ रही है। सुमन कल्याणपुर की जो इब्तदाई करियर है वो शुरुआत हुई थी ऑल इंडिया रेडियो, फिर उसके बाद मराठी फिल्मों में उन्होंने कदम रखा, और देखते ही देखते एक हिस्टोरिक मोमेंट आ गया। शेख मुख्तार जो कि अपनी एक फिल्म बना रहे थे मंगू नाम से, उसके कंपोज़र थे मोहम्मद शफ़ी और शेख मुख्तार ख़ुद। सो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए इस मराठी फिल्म से, सुकराची चांदनी सॉन्ग से। और फिर क्या था, फिर उन्होंने कहा कि तीन गाने मंगू के लिए आप गाइए, और इस तरह से उनको वहाँ पर मौका मिला वहाँ पर। और फिर ड्यू टू सम अननोन यू नो रीजंस लेटर ऑन ओपी नैयर, वो ज़माने के काफ़ी मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर जिन्होंने रिप्लेस किया था मोहम्मद शफ़ी को, और उन्होंने तीन गाने गवाए, जैसे कि एक लल्लाबाई है कि कोई पुकारे धीरे से तुझे, वॉज ऑल्सो रिटेन इन टू दैट सॉन्ग। तो थस शी ऑल्सो एंटर्ड इन टू द सिनेमा इन द ईयर 1954, है ना कमाल की बात। तो कुछ और गाने हम सुमन कल्याणपुर की ज़िंदगी के ताल्लुक से, और उन्होंने जो हिंदुस्तानी मौसीकी के लिए बेपनाह कंट्रीब्यूशन किया है उसको याद करते हैं, और खराज तहसीन एक बार फिर से पेश करते हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपके लिए रहेगा एक और गाना। स्टे ट्यून एंड स्टे टुगेदर।
1: ప్రజా పాలనా ప్రగతి ప్రణాళిక విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. 5 దశల్లో 99 రోజుల ప్రత్యేక కార్యక్రమం, శాఖల వారీగా 10 థీమ్లతో ప్రత్యేక కార్యాచరణ. ఇప్పటికే పరిసరాల పరిశుభ్రత విజయవంతం కాగా వైద్య రంగంలో అద్భుతమైన అడుగులు వేయబడ్డాయి. అరైవ్ అలైవ్ తో ప్రాణాలకు రక్షణ, సంక్షేమ వారోత్సవాలు, డ్రగ్స్ నిర్మూలనకు కఠిన చర్యలు, విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం, పర్యావరణం మొదలైన 10 కీలక రంగాలలో సమస్యల పరిష్కారానికి పటిష్టమైన చర్యలు. ప్రగతి పథం, సకల జనహితం, మన ప్రజా ప్రభుత్వం.

So that was so brilliant to listen a song from a movie that has actually, engulfed all the audience with its very wonderful musical journey. And we are referring to Jab Jab Phool Khile. Jab Jab Phool Khile shayad hi Hindustan ki tareekh mein Kashmir par aadharit koi aisi film hogi jisme Shashi Kapoor ne kaafi behtareen kirdaar ada kiya. Nanda ne bhi khoob unka saath diya. Aaga bhi film mein hai lekin Shashi Kapoor specially apne character ko the skin of the character keh sakte hain. कि एक कश्मीरी लड़के के कैरेक्टर में वो बहुत बहुत खूबसूरत नज़र आए. और इस फिल्म की ख़ास बात यह है कि इस फिल्म में काफ़ी शानदार से नगमे थे. द सॉन्ग्स एंड द म्यूज़िक बाय द डियो कल्याण जी आनंद जी फिर उनको असिस्ट किया था कि उस ज़माने में ज़्यादा मशहूर नहीं थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने और इसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने. जुमला नौ नगमे थे जिसमें मोहम्मद रफ़ी के काफ़ी नगमे रहे हैं और साथ ही साथ आपके दूसरे भी चीज़ें रही हैं जैसे नंदा ने भी गाना गाया है, लता मंगेशकर भी है और उनकी हम शक्ल तो नहीं बल्कि हम नवा और हम आवाज़ सुमन कल्याणपुर भी इस नगमे में है. जी हाँ, नाना करते प्यार एक जो दो लवर्स के बीच में दो आशिक मिजाज जो लोग होते हैं उनके दरमियान जो चीज़ें होती हैं कि हाँ ना में जो झगड़ा होता है जिसके जो ताने बाने होते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस फिल्म में देखने को मिला. तो एक बहुत ही लेजेंडरी म्यूज़िकल जर्नी कह सकते हैं इस फिल्म ने दी और आज भी ये गाने यादगार हैं. आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपनी आवाज़ से पूरी दुनिया का लोहा मनवाया. उन्होंने काफ़ी ज़बानों में गाने गाए. हिंदुस्तानी फिल्में हमेशा उनकी एहसानमंद रहेंगी क्योंकि उन्होंने इस फिल्मों को चार चांद दिए. सुमन कल्याणपुर के करियर के ताल्लुक से हम बात कर रहे थे. ओपी नैयर ने उनके टैलेंट को पहचाना और जल्द ही वो ओपी नैयर की फिल्में जहाँ कहीं भी उन्होंने मौसीकी दी उनको वहाँ पर आने की इजाज़त दी. तो मंगू की फिल्म इस तरह ओपी नैयर साहब के पास चली गई मोहम्मद शफ़ी से. तो उसके बाद का जो सफ़र है वो हम जारी रखेंगे लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद आपकी खिदमत पे रहेगा कुछ और सुमन कल्याणपुर की ज़िंदगी के ताल्लुक से बातें साथ ही साथ नगमे. सो स्टे ट्यून एंड स्टे अलाइव. यू हैव ट्यून टू दिस वेरी वंडरफुल स्टेशन आकाशवाणी हैदराबाद ऑन FM 101.9 MHz एंड द शो दैट यू आर लिसनिंग इज नमस्ते हेलो आदाब. और हम पहुंच रहे हैं रेडियो की तरंगों के संग जो के है 101.9 के माध्यम से. मैं हूं आपका रेडियो मैन.

दोस्तों, आपने ये बहुत ही शानदार सा नगमा सुना। बात एक रात की एक ऐसी फिल्म थी जिसने उस ज़माने के काफ़ी रिकॉर्ड्स ब्रेक किए थे। बात एक रात की एक ऐसी फिल्म भी कही जा सकती है जहां पर आप देखेंगे दो अहम कलाकार देवानंद और वहीदा रहमान की जोड़ी ने काफ़ी अहम और एक कहते हैं ना कि एक जोड़ी जो हमेशा बरकरार रहती है, हमेशा एक दूजे के लिए रहती है, और इसी वजह से बाद में आपने इन दोनों को गाइड फिल्म में भी देखा होगा। सो 1962 की ये शानदार सी फिल्म रही, सचिन देव बर्मन ने जिसकी मौसिकी में चार चांद लगाए, जॉनी वॉकर और असीस सेन ने भी इसमें काम किया। जुमला इस फिल्म में बेशुमार गाने थे, लेकिन ये जो गाना आपने सुना इसका मेल वर्जन भी है। हेमंत दा ने इसमें अपना योगदान दिया, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, लेकिन सुमन कल्याणपुर का ये जो एडिशन है, ये जो वर्जन है, बहुत ही ज़्यादा भावुक है और इसके अंदर काफ़ी इमोशंस हैं। तो मूड्स और इमोशंस को बरकरार रखती हैं सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर के करियर के ताल्लुक से हम बात कर रहे थे। 1954 में उनको ये मौका मिला था हिंदुस्तानी बल्कि इंडियन सिनेमा में एंटर होने का। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मंगू फिल्म में उन्होंने पांच गाने गाए, तीन गाने तो मोहम्मद शफ़ी के लिए, फिर उसके बाद ओपी नैयर ने भी उनको बुलाया। फिर ऐसा हुआ कि कंपोज़र नौशाद ने दरवाजे के लिए उन्हें मधु किया, जिसको प्रोड्यूस किया था उस ज़माने की मशहूर नावल राइटर इस्मत चौगताई। इस्मत चौगताई ने फिल्में भी प्रोड्यूस की, ना सिर्फ उन्होंने फिल्मों के लिए अपनी कहानियाँ लिखी, और काफ़ी कंट्रोवर्शियल ऑथर मानी जाती थी मंटो, और इस्मत चौगताई का नाम आप तो जानते ही हैं, और जिसे डायरेक्ट किया था शाहिद लतीफ़ ने। क्योंकि दरवाज़ा जो फिल्म थी वो जनरली हुआ ये कि वो पहले रिलीज़ हो गई, इस वजह से सुमन कल्याणपुर की ये पहली हिंदुस्तानी फिल्म या हिंदी फिल्म मानी जा सकती है, और इसमें ओपी नैयर का बेहद मशहूर गाना है जो कि है मोहब्बत।

0: कर लो जी, भर लो जी, किसने रोका है, जिसका साथ दिया था गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी ने। तो एक इंटरव्यू में सुमन कल्याणपुर ने बताया कि शी हैड सांग सोलो लाइन्स फॉर द सॉन्ग, और फिर उसके बाद कोरस इसमें आ जाता है। सो दिस सॉन्ग नॉट ओनली प्रूव दैट शी हैज़ ऑल्सो संग सॉन्ग्स फॉर ओपी नैयर, बट एक उस ज़माने में क्या होता था कि आपको क्रेडिट्स नहीं मिलते थे, आपका शायद क्योंकि आपने दो तीन लाइन गाए हैं तो आपको वो क्रेडिट नहीं मिला। तो जो डिस्क है, जो आपके एलपीज़ होते हैं, उसमें उनका नाम दर्ज नहीं था। तो नैयर साहब ने कहा कि सुमन आप फिक्र मत कीजिए, और उनके पेरेंट्स को भी ये हौसला और ये हिम्मत बख्शी कि डोंट वरी कि वी विल टेक केयर ऑफ इट पॉसिबली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सुमन कल्याणपुर का जी नाराज़ हो जाए। तो इस तरह इस कहानी में एक काफ़ी हलचल पैदा होती है। सुमन कल्याणपुर की पहली फिल्म मोहम्मद रफ़ी के साथ, मोहम्मद तलत महमूद के साथ रही है दरवाज़ा। तलत महमूद तो उस ज़माने के काफ़ी मशहूर कलाकार रहे हैं और उनके ताल्लुक से भी जानते हैं, लेकिन जल्दी से हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके लिए एक और नगमा रहेगा, सो स्टे ट्यून एंड स्टे अलाइव।
1: ప్రజా పాలన ప్రగతి ప్రణాళిక విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది.
2: 5 దశల్లో 99 రోజుల ప్రత్యేక కార్యక్రమం, శాఖల వారీగా 10 థీమ్లతో ప్రత్యేక కార్యాచరణ. ఇప్పటికే పరిసరాల పరిశుభ్రత విజయవంతం కాగా వైద్య రంగంలో అద్భుతమైన అడుగులు వేయబడ్డాయి. అరైవ్ అలైవ్ తో ప్రాణాలకు రక్షణ, సంక్షేమ వారోత్సవాలు, డ్రగ్స్ నిర్మూలనకు కఠిన చర్యలు, విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం, పర్యావరణం మొదలైన 10 కీలక రంగాలలో సమస్యల పరిష్కారానికి పటిష్టమైన చర్యలు. ప్రగతి పథం, సకల జనహితం, మన ప్రజాప్రభుత్వం.

0: तो यही वक्त है और वक्त फिलहाल 12 बजे की तरफ मुड़ रहा है और हमारे पास थोड़ा ही वक्त है सुमन कल्याणपुर की नगमों को प्रस्तुत करने का। लेकिन 12:10 पर जब हम लौट कर आएंगे न्यू दिल्ली से, आप समाचार और साथ ही साथ आप सुनेंगे न्यूज़ इन इंग्लिश बारी बारी से। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपको लिए चलते हैं हमारे न्यू दिल्ली के स्टूडियोज़ में जहाँ पर आप सुन सकेंगे इस घंटे की सबसे अहम तरीन खबरें। सो स्टे ट्यून एंड स्टे लाइव एज वी कनेक्ट यू टू न्यू दिल्ली स्टूडियोज़।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: खेलकूद में आज भी एक ऐसे वाला कपड़ा का बॉल बना के वो खेलते हैं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं कि मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत। आज भी गांव गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एक अलग विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल्स 25,000 या 30,000 बच्चों को ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. President Draupadi Murmu today

यादों के साथ एक तकाजा है, वो इतनी जल्दी भुलाए नहीं जा सकते। इसी वजह से सुमन कल्याणपुर की जो मौसीकी है उसको भी कभी भुलाया नहीं जा सकता, वो ताहयात हमें याद आते हैं। इसी वजह से हम बार बार इस तरफ मुड़ते हैं और उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे गोशों को रोशन करने की कोशिश करते हैं जो आज भी हमारे लिए काबिले फ़ख्र हैं। सुमन कल्याणपुर की जो इब्तदाई जो शुरुआत रही है करियर, वो काफ़ी शानदार सा रहा है। कुछ अप्स एंड डाउन्स भी हुए हैं, लेकिन जब उन्होंने तलत महमूद के साथ दरवाज़ा किया, तलत महमूद ने सुमन कल्याणपुर की गायकी को सुना और वो बहुत ज़्यादा आपके कह सकते हैं कि इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा कि एक नया रोशन मुस्तकबिल इस लड़की में है। एंड हर करियर हिट द बिग लीग व्हेन तलत अग्रीड टू सिंग विथ हर, है ना, कमाल की बात। और इस तरह दोनों की जोड़ी ने काफ़ी गाने गाए। शी सैंग फॉर द मूवी मंगू 1954 में, कोई पुकारे धीरे से तुझे, फिर उसके बाद उन्होंने मियाँ बीवी राजी 1960 की ये बात थी, और फिर बात एक रात की फिल्म जिसका हमने गाना भी आपके लिए प्रस्तुत किया, फिर दिल एक मंदिर, फिर दिल ही तो है शगुन, जहां आरा सांझ और सवेरा, नूर जहां साथी पाकिजा, और ऐसी बेपनाह फिल्में उन्होंने दी। उन्होंने काफ़ी मुख्तलिफ कंपोज़र्स के साथ काम किया, जैसे कि काबिले ज़िक्र है शंकर जयकिशन, रोशन, मदन मोहन, कोहली, एस डी बर्मन, एन दत्ता, हेमंत कुमार, चित्रगुप्त, नौशाद, एस एन त्रिपाठी, गुलाम मोहम्मद, कल्याण जी आनंद जी, वसंत देसाई, रवि, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और बूलू सी रानी और उषा खन्ना, जो कि आपके लता मंगेशकर के घरन से उनका ताल्लुक़ है। तो इस तरीके से 1960s से लेकर 1970s तक वो काफ़ी पॉपुलर रही और उन्होंने 740 से ज़्यादा फिल्मों के लिए अपने गाने गाए, और उसमें कुछ नॉन फिल्मी मौसीकी भी रही है, और 140 से ज़्यादा उन्होंने जो गाने गाए हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ थे, जो कि 1960s के थे, है ना, कमाल की बात। तो उनकी और करियर पर नज़र डालते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके लिए रहेगा हमारा दूसरा गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ से, और आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारा एक ख़ास कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब।

0: Well, that's a very beautiful soundtrack, and this soundtrack will actually tell you a lot about the kind of songs that were there in those eras. तो हम माजी की यादों को ताज़ा कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ के ज़रिए. वो हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सा विरसा हमारे लिए छोड़ रखा है. साथी फिल्म, साथी जो कि पुरानी वाली फिल्म है, 1962 में ये फिल्म आई थी. काफ़ी रोमांटिक फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था CV श्रीधर ने. राजेंद्र कुमार, सिल्वर स्क्रीन के हीरो वैजयंती माला और सिमी गारेवाल, पहाड़ी सान्याल, डेविड अब्राहम और वीणा ने अहम भूमिका निभाई थी. एक एनसेंबल ऑफ कास्ट ये इस फिल्म में था. साथ ही इज़ अ ट्राइंगुलर लव स्टोरी, यानी कि लव हमेशा ट्राइंगुलर में ही क्यों आता है इस फिल्म को देखकर आपको पता चलता है. दरअसल ये फिल्म जो थी वो एक तमिल फिल्म की कॉपी थी, पालुम पाड़म, एंड उसी की कॉपी को हिंदी में लाया गया था. काफ़ी अच्छी फिल्म मानी जाती है. इस फिल्म में बहुत सारे गाने थे, नौशाद का संगीत था और हर गाना खूबसूरत तरीके से कंपोज किया गया. मजरू सुल्तानपुरी ने पूरे के पूरे गाने लिखे, जैसे कि जुमला सात गाने थे वो पूरे यही रहे. सुमन कल्याणपुर का सिर्फ एक ही गाना था जो कि डुएट गाना रहा है मुकेश की आवाज़ में, मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है. जी हाँ, तो बहार और प्यार एक बहुत अहम चीज़ें मानी जाती हैं जब आप देखेंगे उर्दू शायरी में हो या फिर आपकी लव और रोमांस वाली शायरी में. तो इसी वजह से गाने को काफ़ी काफ़ी लाइक्स और काफ़ी अप्रिसिएशन मिला कह सकते हैं. तो सुमन कल्याणपुर की ज़िंदगी के ताल्लुक से हम बात कर रहे थे. नौशाद साहब के साथ भी उन्होंने काम किया है, डुएट गाने भी गाए हैं. उन्होंने डुएट गाने लता मंगेशकर के साथ भी गाए हैं, जैसे कभी आज, कभी कल, कभी परसों, और जिसे डायरेक्ट किया था हेमंत दा ने. और उन्होंने दूसरे पॉपुलर मेल सिंगर्स के साथ भी गाने गाए, किशोर दा होने दीजिए, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, मुकेश, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये गाना सुना, तलत महमूद और हेमंत कुमार. और उनके जो बहुत ही मेमोरेबल गाने हैं वो है आपके रफ़ी साहब के साथ, जैसे आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, ब्रह्मचारी फिल्म से गाना था, नाना करते प्यार जो हमने आपके लिए सुनाया, तुमसे ओ हसीना ये गाना हमने सबसे पहले आपको सुनाया, रहें ना रहें हम पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है ये गाना हम आपको सुनाएंगे, और तुमने पुकारा और हम चले आए, जब जब फूल खिले बाद मुद्दत के ये घड़ी आई, मुझे ये भूलना दिल ने फिर याद किया, तुझको दिल बरी की कसम, चांद तकता है इधर. और मनाड़े के साथ उनके भी काफ़ी बेशुमार डुएट गाने रहे हैं, जैसे कि जाने कहाँ हम थे, अंडर द म्यूजिक डायरेक्शन ऑफ दत्ताराम. और शी हैज़ ऑल्सो संग मैनी पॉपुलर डुएट्स लाइक ये किसने गीत छेड़ा, अखियों का नूर है तू, मेरे प्यार का भी तू है, दिल ने फिर याद किया, शाम से कोई कह दे. ये सभी गाने जी हाँ दोस्तों, सुमन कल्याणपुर के ये काफ़ी चुनिंदा गाने हैं. हम इन्हीं गानों को मुंतखब करके, इंतखाब करके, क्यूरेट करके आपके दरमियान ला रहे हैं. और आइए आगे बढ़ते हैं और उन्हीं की एक बेहतरीन फिल्म, बल्कि उनका गाया हुआ ये गाना आपके लिए पेश करते हैं. और एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारा ख़ास कार्यक्रम नमस्ते हेलो आदाब. हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद ये नगमा आपके लिए रहेगा. तो आप हमारे साथ यूं ही ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए, और मैं हूं आपका रेडियो मैन.
1: ఇంటి ఖర్చులకి డబ్బులు ఇవ్వండి భర్త గారు.
2: ఇది రేషన్ కి 15,000, కూరగాయలకి 2,000.
1: మరి కరెంట్ బిల్లుకు
2: 0 రూపాయలు ఎలా ఇస్తాను?
1: ఓహో మర్చిపోయా, ఇప్పుడు సోలార్ ప్యానెల్ పెట్టించాం కదా, దాంతో 4,000 రూపాయలు మిగిలాయి కదా, దాంతో షాపింగ్ చేద్దామా?
2: సరే.
3: పిఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన చేరడానికి రిజిస్టర్ చేసుకోండి, పిఎం సూర్యఘర్ .gov.in.

ऑल राइट साथियों, आपने सुमन कल्याणपुर का ये बेहतरीन संगीत सुना जिसमें सुमन कल्याणपुर ने इतनी खूबसूरत अंदाज में ये फिल्म में गीत गाया था। 1965 की ये फिल्म थी। मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि जिगर से, दिल से जो कही जाने वाली है वही असली मोहब्बत है। और उसका रंग रूप जो मिलता है वो कहीं ना कहीं आपको अपने शायरी से मिलता है। एंड इस फिल्म की इतनी खूबसूरत शायरी थी कि उसको गाने में पिरोया। सुमन कल्याणपुर का एक और बहुत ही मशहूर सा गीत हम लेकर आए हैं और ये फिल्म है नूर महल। नूर महल से ये गीत सुनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गाना पसंद आएगा। लेट मी रिमाइंड एवरीबडी दोज हैव ट्यून्ड टू दिस वंडरफुल स्टेशन आकाशवाणी हैदराबाद एंड एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ दैट आई एम योर रेडियो मैन एंड यू आर लिसनिंग टू द शो कॉल्ड नमस्ते हेलो आदाब।

ऑलराइट, तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को हॉरर फिल्में पसंद है? हिंदुस्तान में हॉरर फिल्में हॉलीवुड से आई थी, उससे पहले हॉरर फिल्में नहीं थी, लेकिन महल एक ऐसी फिल्म थी जिसने हॉरर की जो पूरी दुनिया है, पूरी कायनात है, उसमें हलचल मचा दी थी। वो अंधेरे में झूला और साथ ही साथ दरवाजे की जो आवाज़ें हैं, और अचानक से पत्ते, सूखे हुए पत्तों पर अगर कोई चलता है तो एक किस्म की डरावनी सी आवाज़ आती है। ये सभी चीज़ें इस फिल्म में थी, महल फिल्म से। आपने गाना सुना सुमन कल्याणपुर की खूबसूरत और लाजोड़ और बेमिसाल आवाज़ में। ये गाना एक ऐसा गाना है जो हमें याद दिलाता है कि महबूब के दूर चले जाने से आपके अंदर, आपके दिल के अंदर एक किस्म का इश्तियाल पैदा होता है, कि मिलने की जो तमन्ना होती है फिर कहीं ना कहीं खो जाने का डर होता है। तो यही वजह है कि सुमन कल्याणपुर की आवाज़

ने उस किरदार को बल्कि उस कैरेक्टर में एक नई जान डाली। तो हम बात कर रहे थे कि सुमन कल्याणपुर ने काफ़ी दूसरे आर्टिस्ट के साथ काम किया, उन्होंने काफ़ी दूसरे जो रिकॉर्ड्स है वो भी ऐड किए, जैसे कि क्लासिकल बेस में उन्होंने ऐड किया मनमोहन मन में हो तुम मेरे संग गुनगुना और गिर गई रे मोरे माथे की बिंदिया। ये ऐसे क्लासिकल रिकॉर्ड है। लता मंगेशकर के साथ भी उनकी काफ़ी बेहतरीन जोड़ी रही, उन्होंने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया क्योंकि हर बार ये लगता था कि वो लता मंगेशकर की ही डुप्लीकेट आवाज़ है, एंड दे वर टोटली अनकम्पेरेबल। सुमन कल्याणपुर कभी कभार ऐसे महसूस करती थी कि जब कभी ऐसी कोई कंपेरिजन होती है तो उसमें वो अनकम्फर्टेबल हो जाती थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही यादगार सा नगमा, और ये नगमा हम चाहते हैं कि आप सभी सुने, समझें और जानें। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद आपके लिए ये गाना।

0: साथियों, आप सुन रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब, और मेरा नाम है रेडियो मैन। और फिल्म का नाम, जिस फिल्म से हमने आपके लिए ये गीत मुहैया करवाया, वो है शगुन। शगुन एक ऐसी फिल्म थी जो 1964 में, जिसे डायरेक्ट किया था नज़र ने, और जिसकी मुख्य भूमिका में थी वहीदा रहमान, कमलजीत, नाज़िर हुसैन और अचला सचदेव। एक बड़ी शानदार सी फिल्म थी। महबूब स्टूडियोज़ में इसकी शूटिंग हुई। खयाम की बेपनाह मौसिकी और साथ ही साथ साहिर लुधियानवी के खोश रुबा वाले जो बोल थे, गीत थे, वो एक मेमोरेबल चीज़ें बनकर उभरे हैं। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, इस फिल्म की रंगारंग जो महफिल है उसको बार बार दोहराते हैं। सुमन कल्याणपुर ने इस फिल्म में दो तीन और गीत भी गाए थे, लेकिन ये जो डुएट गाना है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, ये एक लाफानी गाना है जिसकी मिसाल शायद ही ढूंढने से भी नहीं मिलती। सुमन कल्याणपुर हमसे रुखसत हुई हैं 31 मई 2026 में। हम उनकी ही याद में आज का ये ख़ास कार्यक्रम नमस्ते हेलो आदाब आपके लिए लेकर आए हैं, और हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दूसरे जो अगले गाने हैं वो किस किस्म के हैं, और साथ ही साथ उनका जो एक यूनिक स्टाइल था वो हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। बेपनाह उन्होंने फिल्मों में काम किया और साथ ही साथ नगमे गाए, और एक ऐसी नई आवाज़ दी दुनिया को जो दुनिया आज भी उन्हें याद कर रही है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद आपकी खिदमत में रहेगा ये दूसरा गाना।
1: ప్రజా పాలన ప్రగతి ప్రణాళిక విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది.
2: 5 దశల్లో 99 రోజుల ప్రత్యేక కార్యక్రమం, శాఖల వారీగా 10 థీమ్లతో ప్రత్యేక కార్యాచరణ. ఇప్పటికే పరిసరాల పరిశుభ్రత విజయవంతం కాగా వైద్య రంగంలో అద్భుతమైన అడుగులు వేయబడ్డాయి. అరైవ్ అలైవ్ తో ప్రాణాలకు రక్షణ, సంక్షేమ వారోత్సవాలు, డ్రగ్స్ నిర్మూలనకు కఠిన చర్యలు, విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం, పర్యావరణం మొదలైన 10 కీలక రంగాలలో సమస్యల పరిష్కారానికి పటిష్టమైన చర్యలు. ప్రగతి పథం, సకల జనహితం, మన ప్రజా ప్రభుత్వం.

0: जहां आरा फिल्म से आपने गीत सुना सुमन कल्याण पर और मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत जोड़ी और आवाज़ों में, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद सुमन कल्याणपुर की जो अवार्ड्स हैं, अप्रिसिएशन हैं, फिर उनको किन चीज़ों से नवाजा गया उस पर हम रोशनी डालेंगे। सो स्टे ट्यून एंड स्टे अलाइव।
1: ఎల్ఐసి యొక్క బీమా కవచ్ మీ జీవిత అవసరాలకు అనుగుణంగా మారుతూ ఉండే ఒక ప్యూర్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్, కీలకమైన లైఫ్ స్టేజెస్ లో మీ సమ్ అష్యూర్డ్ ని పెంపొందించుకునే అవకాశం, ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రీమియం పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ 100 సంవత్సరాల వరకు అందుబాటులో ఉండే లైఫ్ టైమ్ రిస్క్ కవర్ తో ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా ఉండండి। ఎల్ఐసి హర్ పల్ ఆప్కే సాత్।
0: दोस्तों एक बार फिर से याद दिला दें आपको, अपने रेडियो सेट्स पर आपने ट्यून किया है हमारा एक खास कार्यक्रम नमस्ते हेलो आदाब। मेरा नाम है रेडियो मैन और शो चल रहा है आकाशवाणी एफएम 101.9 के माध्यम से। अगर आप देखेंगे सुमन कल्याणपुर ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी प्रेस्टीजियस अवार्ड हासिल किए, उनको सुर श्रृंगार समसाद के अवार्ड से भी नवाजा गया। 2009 में अगर आप देखेंगे लता मंगेशकर अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उन्हें अता किया, और फिर 2022 में मिर्ची लाइफटाइम म्यूज़िक अवार्ड, फिर 2023 में उन्हें पद्म भूषण जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही इम्तियाजी अवार्ड होता है, पद्मश्री अवार्ड्स जैसे होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, उसमें से पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बार बार उनको काफ़ी सम्मान दिया है। उनकी जो अलालत थी, बल्कि कह सकते हैं कि इलनेस की वजह से, वो अपने लोखंडवाला मकान में 31 मई 2026 में तकरीबन

0: 90 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गई। तो काफ़ी उनका एक लंबा सफ़र रहा है और कुछ लोगों ने उन पर ऑटोबायोग्राफियाँ भी लिखी हैं और एज रिलेटेड कॉजेस की वजह से वो इंतकाल फरमा गई। दुनिया रहती दम तक इस कलाकार को हमेशा याद रखेगी और बार बार उन्हें याद किया जाएगा उनकी बर्थ और डेथ एनिवर्सरीज पर, जैसे कि हमने आज उन्हें याद किया। तो आइए सुमन कल्याणपुर को खराज अकीदत पेश करते हुए नमस्ते हेलो आदाब का हम इख्तिताम करते हैं इस नक़्मे से।
1: एक तो मैंने लिख ली है, वो बम्बई से डालूंगा, फिर लिखूंगा जहाज पर से, फिर एडन से, फिर मार्शल से, और फिर लंदन पहुंचकर।
2: मुझे भूल तो नहीं जाती।
1: ऐसी बातें कर रही हो तुम। मनीष ने जिंदगी में सिर्फ दिव्यानी को चाहा है और कोई लड़की कभी उसके जिंदगी में नहीं आएगी, कभी नहीं। मैं तुम्हारे पास रहूं या न रहूं देवयानी, तुम्हारी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। देवयानी, एक बार फिर तो कहो, रहें न रहें हम, मैं क्या करेंगे, बन के कली, बन के सबा, आगे वफा में।

0: इंसान तो बता दो ना बोलने का।
1: सिर्फ ना काफी नहीं है क्या?
2: All right, so you're listening to this very amazing song, Do Diwane Shahar Mein. Do Diwane Shahar Mein, ek inspirational jo line thi, ek gaane ki, usko lekar unhone ek film hi bana di. Kyunki shahar jo hai na, wo ek chumbak ki tarah.

0: ऑल राइट फ्रेंड्स, तो कुछ लोग हमें कॉल कर रहे हैं और ढेर सारे लोग हमें मैसेज भी कर रहे हैं, तो चलिए हम उनके मैसेजेस और उनके कॉल्स का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले लेंगे ये साहब को। हेलो, आर यू देयर? क्या आप हमारे साथ जुड़े हैं? कैन वी लिसन टू यू? हेलो, आर यू
1: हेलो,
0: देयर?
1: गुड आफ्टरनून, आदाब सर।
0: हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन बहुत ही कम, तो हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ को थोड़ा बुलंद किया जाए। वी वॉन्ट यू
1: ओके
0: टू,
1: सर, आगे आ रही है। हाँ
0: अभी फिलहाल आ रही है, बताइए।
1: सर, पहले

0: आपको सभी भाई बहनों को, दोस्तों को प्यार भरा सलाम आदाब। अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको सबको खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे।
1: ऑलराइट, थैंक यू। बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? यस, वो है तो साइकिल आपने कभी चलाई है?
0: बहुत अच्छा है सर, मैं बता दूं आपको, मैं ब्लाइंड हूँ। जब मैं ब्लाइंड हो गया ना, उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ मैदान में जाके साइकिल सीखता था सर।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: हाँ, तो छोटी साइकिल चलाया, फिर बड़ी साइकिल, मतलब बहुत बार गिरता था, फिर उठता था, गिरता था, और सीख गया। फिर डबल सीट भी चलाना सीख गया। तो मतलब बचपन में तो मैंने बहुत इंजॉय करा और बहुत मजा आता था। ग्राउंड में लेके चले जाते थे मेरे दोस्त लोग मेरे को, और तो साइकिल पे मैं बहुत मतलब इंजॉय करता था। दोस्तों की साइकिल या अपने छोटे भाई की साइकिल लेके वहां जाके बहुत इंजॉय करता था। और साइकिल एक ऐसी चीज है सर, एक कुदरती चीज, मतलब एक नेचुरल चीज से हम दूर हो गए हैं आजकल। अगर वो हमारे गाड़ियां हैं आपके पास, इम्पोर्टेड टू व्हीलर फोर व्हीलर कोई भी रखो, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ हर किसी के पास एक साइकिल घर में होना जरूरी है,
1: एब्सोल्युटली,
0: अगर अपनी सेहत को बरकरार रखना है।
1: तो अभी भी आप चलाते हैं साइकिल?
0: हाँ, अभी तो मौका नहीं मिलता सर। अब वो मैदान, वो ग्राउंड नहीं रहा, अब वो
1: ओ
0: दोस्त
1: हो
0: नहीं रहे, अब वो माहौल नहीं रहा। लेकिन अभी भी बेचैन रहता हूँ मैं कि काश वही हरियाली वाले मैदान मिले, वो ग्राउंड मिले, वो दोस्त लोग मिले, और साइकिल हो मेरे पास, और मैं सुबह शाम उसको चलाता रहूँ, तो मेरी सेहत भी हेल्दी रहेगी ये सब।
1: एब्सोल्युटली, मैं आपकी बात से 100% सहमत और मुत्तफिक हूँ। और बेहद शुक्रिया शेर खान साहब, आपने कॉल किया। एक बार हमारे श्रोताओं और हमारे लिसनर्स और सामईन को बता दें कि ये आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मेहनत मशक्क़त की, ग्राउंड में साइकिल सीखी, उसके बाद न सिर्फ अकेले चलाने की कोशिश की आवाज़ के ज़रिए, बल्कि डबल सवारी भी की उन्होंने। तो एक बड़ी खूबसूरत बात है और जिसके लिए हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। और साइकिल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, कहानियाँ अगर आपके पास है तो आप हमें ज़रूर बताइए, हमें कॉल कीजिए। अगर कॉल्स व्यस्त हैं या फिर बिज़ी हैं तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए नंबर है हमारे 0402323482। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे पर ये आज का अपना टॉपिक है, क्योंकि हमें साइकिल जो है बहुत ढेर सारे पैगाम और पैगाम देती है। सबसे पहले कि हमें हम्बल होना सिखाती है, और साथ ही साथ हमें ये भी बताती है कि आपकी सेहत कितनी ज़रूरी है, और इस ज़िंदगी की बागडोर और भागदौड़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। हम जहाँ पर जल्दी पहुँचना चाहते हैं अपनी मोटर साइकिल के ज़रिए या फिर गाड़ी के ज़रिए, वहीं हमारी सेहत भी कॉम्प्रोमाइज़ होती चली जा रही है। तो ये कॉनंड्रम को समझने की बेहद अशद ज़रूरत है। तो 1:14 हमारी स्टूडियोस की घड़ी फ़िलहाल बता रही है। तो आइए आपको लिए चलते हैं एक ऐसे सैयारे की तरफ जहाँ पर बहुत ही दिलकश और खुशनुमा नगमे हैं। तो मिलकर सुनते हैं सैयारा फिल्म से ये एक खूबसूरत सा गीत।

ऑलराइट, तो जनरेशन जी को किस तरीके से गाने पसंद आते हैं इसका भी काफ़ी रिसर्च चल रहा है, लेकिन ये फिल्म सिर्फ एक नई जो रोशनी लेकर नहीं आई थी बल्कि पुरानी ही स्टोरी थी, लेकिन इसमें एक नयापन था। वो नयापन ये था कि आप जनरेशन जी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, गानों के ज़रिए या फिर सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स होते हैं उसके ज़रिए। तो फ़हीम अब्दुल्ला की आवाज़ में आपने गाना सुना, बहुत ही शानदार सा गाना था। इसका एक फीमेल वर्जन भी है, दोनों कलाकारों ने काफ़ी अच्छी

एक्टिंग भी की है आहान और अनीत, तनिष बागची ने मौसीकी दी, इरशाद कामिल ने इसके बोल लिखे। तो इसी तरह एक और एक फिल्म है जो काफ़ी मशहूर हुई है और फिलहाल वो ट्रेंड कर रही है, करोड़ों का वो बजट लेकर बनी थी और साथ ही साथ इस फिल्म ने ऐसे भी कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े हैं जो कि अब तक देखने को नहीं मिलते हैं। तो मैं जिक्र कर रहा हूँ आपकी धुरंधर, धुरंधर 1 हो या धुरंधर 2 जो कि सीक्वल है, लंबी फिल्में हैं, 3 साढ़े 3 घंटे आपको बैठ कर देखना है। स्पाई वाली फिल्में तो काफ़ी आई थी लेकिन इस तरह कोई 40 साल 45 साल पहले एक स्पाइंग जो अपने करीबी मुल्क हैं बल्कि अपने जो हमसाए में मुल्क हैं फिर उनकी जो आपकी एक्टिविटीज़ है उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ को एक्सपोज करना और फिर हमारे मुल्क को उनसे बचाना एक बड़ी हिम्मत का काम है। शायद ये वजह है कि जनरेशन जी को ये फिल्म भी बहुत पसंद आई। 1000 करोड़ से ज़्यादा इस फिल्म ने अपना बॉक्स ऑफिस पर लोहा मनवाया है और साथ ही साथ इस फिल्म ने दूसरे जैसे OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी 210 मुल्कों तक अपनी जो एक पहुंच है उसको भी बरकरार रखी है। तो आइए इस फिल्म का एक बहुत ही शानदार सा गाना हम सुनते हैं, उम्मीद है आपको ये गाना पसंद आएगा। इस फिल्म में काफ़ी मारकाट है, वॉयलेंस है, खून की नदियाँ बहती हैं लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं खून से लथपथ इंसान अगर कहीं आराम कर सकता है तो वहाँ पर कुछ गाने भी हैं। सो लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग।

0: ऑल राइट, सो बेहद ज़रूरी ये गाना है क्योंकि इस फिल्म में काफ़ी खून खराबा है, तो गाने जो है वो कहीं ना कहीं एक ब्रेक देते हैं, वायलेंस से मुक्ति देते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टर जो होता है कि हम चाहते हैं कि पर्दे पर काफ़ी खून देखें, तो इस पर भी बात होगी थोड़ी देर में. लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो कॉलर हैं हमारे साथ जुड़े हैं. हेलो, आप हमारे साथ हैं तो आप बताइए आपका नाम. हेलो रेनबो,
1: हेलो, नमस्कार रेनबो जी।
0: नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में. आपका नाम, आपका परिचय दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं आप?
1: हमको गोले की प्रभाकर राव बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा प्रभाकर राव जी,
1: इस वक्त
0: क्या करते
1: में
0: हैं आप?
1: इस वक्त में बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। हम
0: ओ वाह, तो बेंगलुरु में आप क्या कर रहे हैं? मौसम, क्योंकि हैदराबाद का मौसम आपको पसंद नहीं आया, बेंगलुरु में तो
1: नहीं
0: बारिश हुई
1: आया
0: है.
1: नहीं, हमारा बेटी और दामाद रहता है इधर,
0: हाँ, तो काफ़ी अच्छा
1: इसलिए आए थे।
0: डेस्टिनेशन है बेंगलुरु, थोड़ा बेहतर है हैदराबाद से क्योंकि
1: हाँ,
0: मौसम
1: बहुत
0: साफ सुथरा है.
1: बहुत मौसम बहुत बढ़िया है।
0: हाँ, ये बात तो है.
1: हाँ, कल फुल पानी गिरा।
0: हाँ, बरसात तो बहुत हुई लेकिन हैदराबाद में तो पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ रही है.
1: अभी
0: हम
1: 2 दिन टाइम है हैदराबाद का गिरने के लिए।
0: जी हाँ, और चिलचिलाती धूप है, ऑलमोस्ट
1: हाँ,
0: फुपोले होने वाले हैं हमारे जिस्म पर.
1: सही सही।
0: जी हाँ,
1: तो ना,
0: तो ये बताइए, आपने तो अपनी जिंदगी में कुछ साइकिल वगैरह तो चलाई होगी.
1: हाँ, साइकिल साइकिल, हम 8th क्लास पढ़ रहे थे हमारा गांव में,
0: जी हम्म,
1: तो जब हमारा हम ब्राह्मण थे, हमारा एक ही घर है वो गांव में,
0: अच्छा
1: तो ये और दूसरा ब्राह्मण लोग ये शादियां सचना व्रतम और पूजा वगैरह करते ना,
0: हम्म,
1: उन लोग आते थे हमारा घर में, आके बैठते थे और खाना वाना पूरा वहीं हमारा घर में।
0: वाह क्या बात है. कौन सा गांव है वैसे आपका?
1: विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट है।
0: अरे वाह वाह, वो तो बहुत ही पास है, विशाखापट्टनम और उड़ीसा का
1: हाँ,
0: बॉर्डर है.
1: विशाखापट्टनम विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में है। तो
0: जी
1: जब तो साहब पंतलू साहब
0: जी
1: साइकिल नया लाए थे,
0: ओके
1: हम और हमारा भाई, जब तक हमारा साइकिल नया था वो
0: जी
1: चाबी डाल दिए, कैसा निकालना बोल के।

0: एक स्क्रू ड्राइवर से लेके निकाल दिए।
1: वाह
0: हाँ,
1: वाह वाह, तो लॉक तोड़ना पड़ा समझिए ऑलमोस्ट। जी
0: फिर चलाए चलाए
1: हाँ,
0: इस टाइम पे एक दिन अच्छा चलाए, दूसरा दिन गिर गया,
1: अरे रे रे रे, हाँ
0: थोड़ा मारा लगी, वो मारा ना लगी तो साइकिल नहीं आती।
1: हाँ बिल्कुल, आपको चोट
0: हाँ
1: लगनी चाहिए, चोट ही आपको
0: हाँ लगी
1: सिखाती है।
0: थोड़ा, उसके बाद वो हैंडल थोड़ा क्रॉस हो गई,
1: अरे
0: अल्लू जाके लगा दिया, फिर चाबी डाल दिए।
1: वाह, आप तो
0: तो
1: काफी
0: आगे गेट के
1: नटखट।
0: सामने कौन निकाले ये साइकिल को, कौन है बोल के ढूंढ रहे हो।
1: ओहो, तो मिला उनको, किसने निकाला कुछ
0: अब
1: पता
0: पता
1: चला?
0: पता हो गया, पा पा पा पछाड़ लिए हम ही लिया बोल के, ऐसा साइकिल सीख लिए।
1: क्या बात है,
0: उसके बाद हमारे को एक कॉल लेटर आए थे, गवर्नमेंट जॉब आया हैदराबाद में।
1: जी
0: जब आए इस टाइम पे कहां से, आईडीपीएल कॉलोनी से लेके अपना दिलशुख नगर एलबीनर सड़क मुंबई
1: ओ बाप रे,
0: से।
1: बहुत दूर है ये, उस छोर से इस छोर की तरफ है।
0: हाँ, सुबह शाम सुबह जाके फिर शाम में आते थे,
1: ओ
0: जब उतना ट्रैफिक नहीं थे ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैफिक नहीं था
0: रोड
1: लेकिन
0: इतना
1: तो
0: साफ
1: लंबा
0: है।
1: सफर है।
0: हाँ, बहुत बहुत चलाया, बहुत दिन चलाया ऐसी।
1: वाह, तो आप अभी चलाने का कभी इत्तेफाक होता है? वो कहते हैं ना कि एक बार आप जब साइकिल सीख लेते हैं वो लाइफ स्किल है, कभी भूलते नहीं है।
0: हाँ, हमारा पोतरा है ना, पोतरा को लिया था
1: जी
0: वो साइकिल, उनको सिखाए थे टाइम पे ऐसा चलाना बोल के, मैं फिर चलाया।
1: ओ वाह वाह वाह, तो उनको ट्रेनिंग दी आपने।
0: ट्रेनिंग दिया और फिर मैं चला चला रहा हूँ कभी कभी।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, और मुझे इतनी खुशी हुई है कि आपकी जो बचपन की यादें हैं साइकिल से वाबस्ता, स्पेशली आपके गांव विजयनगरम में आपने जिस तरीके से उसका लॉक खुफल तोड़ा और फिर गाड़ी लेकर गए, फिर वापस लगा दी, तो ये जो शरारतें हैं वो आज भी
0: क्या
1: रोशन
0: करना,
1: हैं।
0: सीखना ना, साइकिल तो आना जरूरी है।
1: जी हाँ
0: जब साइकिल भी कम था,
1: हाँ, वो भी एक लग्जरी माना जाता था, इतना आसान नहीं है।
0: हाँ बहुत बहुत लग्जरी, एक साइकिल है बोल तो बहुत लग्जरी की जिंदगी है उनका।
1: हाँ, और आप पैसे वाले खाते पीते घराने के माने जाते हैं।
0: हाँ
1: तो बेहद शुक्रिया
0: थैंक
1: राव साहब, आपने कॉल किया बेंगलुरु से,
0: यू,
1: और
0: थैंक यू फॉर कॉलिंग
1: बेंगलुरु को भी
0: एचआरपी।
1: हमारा आदाब कह दीजिए, और उम्मीद के बेंगलुरु से हम हैदराबाद वाले कुछ सीखें, बारिश यहाँ पर भी लेकर आएं, और आप आते समय बारिश जरूर लेकर आइए।
0: हाँ ठीक है, अभी 2 दिन में आ रहे हैं हैदराबाद
1: हाँ,
0: घूमने,
1: तो 2 दिन आपके साथ ही बारिश को लेकर आइए।
0: दो दिन में आ रहे, 2 दिन में बिल्कुल आ जा रही
1: और
0: पानी।
1: आप कब आ रहे हैं वो बताइए,
0: हाँ,
1: आप कब आ रहे हैं?
0: मैं अभी ये महीने एंडिंग में आ रहा हूँ सब।
1: अच्छा ठीक है, तो आपका भी इस्तकबाल रहेगा हैदराबाद में। बहुत शुक्रिया
0: हाँ,
1: आपने कॉल किया।
0: मेरे को भगवान ही भिजाया हैदराबाद में, तो बहुत पहली बार है तुम्हारे को,
1: जी हाँ,
0: वेंकटेश्वर स्वामी भिजाया, बेंगलुरु को
1: वाह
0: जाओ अच्छा रहता आराम से बोल
1: वाह
0: के।
1: वाह, क्या बात है, आपने
0: थैंक
1: अपनी दिल की और आपकी आवाज सुनी, बहुत शुक्रिया।
0: यू, थैंक यू। वॉलेट प्रभाकर, नमस्कार जी।
1: ओके नमस्कार, तो ये थे प्रभाकर राव साहब जो कि बेंगलुरु में अपने मौसम का लुत्फ ले रहे हैं, और हम यहाँ पर दोपहर में 1:30 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं, तो उस वक्त चिलचिलाती धूप है। फिलहाल स्टूडियोज़ में उतनी धूप नहीं है, लेकिन महसूस तो हो रही है कि एक रोशन सा शहर बन गया है, काफ़ी आपके प्रिकली हीट है। सो वी विल ट्राई टू रिड्यूस द हीट बाय प्लेइंग सम ऑफ द वेरी अमेजिंग सॉन्ग्स हियर इन दिस एडिशन ऑफ हेलो रेनबो। यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अस, वी आर ट्राइंग टू रिकलेक्ट सम ऑफ दोज लवली मेमोरीज ऑफ योर ओल्ड साइकिलिंग हैबिट्स। हाउ डिड यू लर्न द साइकिलिंग? एंड मेनी पीपल सेड दैट इफ यू हैव नॉट फॉलन वंस देन यू हैव नेवर लर्नड साइकिलिंग। वेल टॉकिंग अबाउट साइकिलिंग, वी शुड नेवर फॉरगेट दैट हाउ RCB हैज बीन एबल टू गेट इट्स कप, retained its title, and it was a spectacular performance. Although it was one-sided match, but they were able to make it. But there were post-match, there were lots of hue and cry in near Hyderabad roads, and people have just come out in huge numbers. The fans were going berserk, and probably they were all over the place. So we will try and accommodate some of these songs. So do let me know through the WhatsApp number 0402324822, and we are going to take you to another very interesting song, Apna Banale. This is Arijit Singh's song. I'm your radio man, and you have tuned to this wonderful edition of the show Hello Rainbow on FM Rainbow 101.9.

0: जी हाँ, बहुत ही शानदार सा ये नगमा है, अपना बना ले पिया, भेड़िया फिल्म से। नाम कुछ और है फिल्म का, लेकिन अगर आप गाना देखेंगे तो इतना इंसानी इसके अंदर रूप है। और फिर प्यार मोहब्बत की बातें किसको पसंद नहीं आती, तो इन्हीं बातों को बरकरार रखते हुए हमने अपने अगले कॉलर को दावत दी है, तो उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो।
1: हेलो हेलो, आ रही आवाज़ आ रही है?
0: हाँ हाँ बहुत ही
1: हाँ
0: साफ सुथरी शफाफ
1: हाँ
0: आपकी आवाज़ आ रही
1: बिल्कुल
0: है, तो आप थोड़ा अपने
1: जी।
0: अगर स्पीकर पर हैं तो स्पीकर को बंद कर दीजिए, या
1: नहीं,
0: फिर आप थोड़ा
1: स्पीकर
0: दूर हैं
1: स्पीकर पे तो
0: क्योंकि।
1: नहीं है, स्पीकर पे तो नहीं है, थोड़ा खिड़की के पास आती हूँ।
0: अच्छा, खिड़की के पास आ
1: हाँ
0: जाइए, तो खिड़की
1: जी,
0: के पास
1: थोड़ा
0: गर्म
1: सा
0: हवाएं भी आने का इम्कान
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। तो कहाँ से बोल रही हैं आप, क्या
1: गर्मी
0: नाम है
1: भी
0: आपका?
1: आता है। मेरा नाम मुमताज है, मैं
0: मुमताज,
1: हसमत जी, हसमत पेट से बात कर रही हूँ।
0: बहुत खूब। मुमताज महल के नाम पर ताजमहल भी है
1: शुक्रिया बहुत बहुत भैया,
0: जी।
1: आपका बात करने का अंदाज

0: प्रोग्राम पेश करने का अंदाज, उर्दू में जो बात करते और प्रोग्राम भी अच्छी तरीके से पेश करते, गाने भी बहुत पुराने अच्छे लगाते, तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं कॉल कर रही थी।
1: जी हाँ, नहीं शुक्रिया। तो आपने कभी साइकिल चलाने की कोशिश की है या आपके पास कोई साइकिल है?
0: जी भैया मैं तो ब्लाइंड हूँ।
1: अच्छा, ये क्या एक इत्तेफाक भी हो सकता है कि इससे पहले शेर खान साहब ने कॉल किया, वो भी नाबीना है, वो भी ब्लाइंड है, और आपने भी कॉल किया, आप मुमताज हैं और आपको भी नज़र नहीं आता, तो शायद रेडियो से जुड़ने की एक वजह ये होती है कि जो सूती चीज़ें हैं, जो सुनने वाली चीज़ें हैं, वो काफ़ी मायने रखती हैं।
0: पसंद आता है रेडियो। शेर खान भाई से हमको फोन पे दोस्ती हुई, वो भी भाई है।
1: अच्छा,
0: उनको भी, हाँ, उनको भी मेरे तरफ से बहुत सलाम। और अगर एक गाने की रिक्वेस्ट है, अगर पुराना गाना लगा सके
1: तो कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने पुराने गाने तकरीबन 3 घंटों तक प्ले किए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो जनरेशन जी को भी हमारे साथ ले लें, दूसरी जो आपकी जनरेशन है उनको भी साथ लेकर चलना पड़ता है।
0: सही। अगर हो नहीं हो सका तो एक साल का है ना,
1: हाँ हाँ हाँ बेशक। तो आशिकी 2 का ये गाना है असल में। ठीक है, ज़रूर। तो बेहद शुक्रिया आपने कॉल किया मुमताज़ साहिबा। तो आपसे बात करके काफ़ी मज़ा आया, और साइकिल का जो शौक़ है वो रखने वाले हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। जल्दी से बताइए कि आपकी साइकिल की जर्नी कैसी रही, क्या आपको याद है कि पहली मर्तबा आपने कैसे पैडल मारा, कैसे 2 पहियों को लेकर आप आगे बढ़े, और कभी कभी जो चढ़ाव है उस पर आपको काफ़ी फुर्ती, मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती थी, और जब कहीं ढलान आ जाता था, स्लोप आ जाता था, तो उस वक्त आपको पैडल मारने की ज़रूरत ही नहीं है, जो आपने मेहनत की है उसकी बिना पे आपकी साइकिल आगे बढ़ जाती है ना। तो बाईसाइकिल पर बातें हो रही हैं यहाँ पर। फ़िलहाल हमारे पास बहुत कम वक्त है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नगमे आपके लिए प्ले करें, और ये उम्मीद बरकरार रहेगी। एक फ़िल्म आई थी फ़ौजियों के ताल्लुक़ से, तो काफ़ी फ़िल्में आई हैं, शेरशाह एक ऐसी फ़िल्म है, और साथ ही साथ 21 फ़िल्म जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, और इसमें धर्मेंद्र की आखिरी फ़िल्म थी, वो अपनी आखिरी सांसों में इस फिल्म में काम किए थे, उनकी जो अदाकारी हो बहुत खूबसूरत है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगस्त्य नंदा जो कि अमिताभ बच्चन के पोत्र हैं, नवासे हैं, उन्होंने भी इस फिल्म में काम किया था। तो ये फिल्म आप ज़रूर देखिए अगर आपको फुर्सत मिलती है तो, OTT पर अवेलेबल है। इस फिल्म का एक गाना हम मिलकर सुनते हैं।
2: देव किरण, अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ।

0: बेटा मुकेश ये अभी 50 साल का है और ये बड़ा बेटा अरुण ये हमेशा 21 का ही रहेगा
1: ऑल राइट दोस्तों 21 और फिलहाल हमारी स्टूडियोस की घड़ी बता रहे हैं कि 47 मिनट हो चुके हैं बचकर तो हम यहीं पर लेते हैं हमारा इख्तिताम और ये शो इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। आपसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, काफ़ी मज़ा आया। सुमन कल्याणपुर के कुछ नगमों को हमने याद किया, साथ ही साथ हमने कुछ नए गाने जो जनरेशन जी से वाबस्ता हैं उनको भी याद किया। तो मैं मेरी दोस्त आ चुकी हैं लकी लक्ष्मी सुशीला के नाम से हैं लेकिन उनको नाम में लकी लगाना काफ़ी पसंद है तो मैं उनसे पूछने वाला हूं और शायद वो जवाब दे ना दे बट आई एम श्योरली गोइंग टू आस्क हर अबाउट हर साइकिल जर्नी बिकॉज टुडे इज़ द बाईसाइकिल डे वर्ल्ड बाईसाइकिल डे एंड नोबडी हैज़ एवर रियली डन एनी अदर राइडिंग rather than bicycle. So I love bicycling just because we have to go from far distances. It's always difficult to cope up with the, you know, bicycles. Somehow technology and communication has put us on the fast track mode, which will make us really, really pissed off at times, but nothing like bicycle. So create a community, communicate with others, and I think that ecosystem you build in will surely going to provide you the right apparatus to take your journey further. So on that very note, I'm going to sign off in that way. But it was so wonderful meeting you all. Thank you so very much indeed. And this is your radio man saying you ta-ta, bye-bye, and take care of yourself. And hopefully we'll meet soon. So Rainbow is your voices, your colors, your stage, from bicycle to the songs that we covered this journey. And the stories will stay with you. So stay tuned because Rainbow adds colors to your life. And Rainbow FM 101.9 never fades. Hasta la vista, baby. Adios, amigos. And ta-ta.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: प्रोग्राम नैरंग। दोस्तों, सबसे पहले आज नैरंग में पेश किए जाने वाले प्रोग्राम की तफसील आपको बता देते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज होगा हर्फ ताबिंदा से। तहरीर पेशकश होगी नूरुद्दीन साहब की। उसके बाद आप प्रोग्राम मसहल हमें जानों में सुनेंगे दखनी अदब की तरवीज व इशात में मौलवी नसीरुद्दीन हाशमी की खिदमात पे एक टॉक। तहरीर पेशकश होगी मोहम्मद शाहिद अली की। और फिर गीत सुरीले गाते जा में आप सुनेंगे खूबसूरत फिल्मी नगमे। और प्याम शब के साथ नैरंग इख्ताम पजीर होगा। तहरीर पेशकश होगी जैदी साहब की। तो दोस्तों, आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हर्फ ताबिंदा से। तहरीर पेशकश है नूरुद्दीन साहब की। लीजिए समाअत फरमाइए।
1: इल्म सबसे बड़ी दौलत है। हम अक्सर दौलत को सोने चांदी जायदाद और बैंक बैलेंस से जोड़ते हैं। बिलाशुबा ये चीजें हमारी जिंदगी में आसानी पैदा करती हैं, लेकिन क्या ये हकीकी और पायदार दौलत हैं? जरा गौर कीजिए। ये मादी चीजें एक लम्हे में ख़त्म हो सकती हैं। कुदरती आफात, मौशी बहरान या चोरी, ये सब कुछ हमारी मादी दौलत को खाक में मिला सकते हैं। लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई आफत तबाह नहीं कर सकती, और ना ही ये वक्त के साथ कम होती है, बल्कि ये तो बांटने से बढ़ती है। जितनी ज़्यादा हम इल्म को दूसरों के साथ बांटते हैं, उतना ही ये हमारे अंदर पुख्ता होता जाता है। इल्म इंसान को जहालत के अंधेरों से निकालकर रोशनी की दुनिया में लाता है। ये हमें सही और गलत में तमीज़ करना सिखाता है, अच्छे और बुरे की पहचान कराता है। एक तालीम याफ्ता शख्स न सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बल्कि अपने ख़ानदान, माशरे और मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। इल्म इंसान को इज़्ज़त और विखार अता करता है। तारीख गवाह है कि वही कौमें तरक्की की मनाजिल तय करती हैं जिन्होंने इल्म को अपना शौर बनाया। आज की दुनिया में भी वही ममालिक आगे बढ़ रहे हैं जो तालीम और तहकीक पर सबसे ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। इल्म हमें गौर व फिक्र की सलाहियत देता है, हमें नए ख्यालात को जन्म देने की तरगीब देता है, ये हमें तनखीदी सोच का हामिल बनाता है और हमें ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करता है। इल्म के ज़रिए ही हम नित नए इजादात करते हैं, साइंसी तरक्की के मनाजिल तय करते हैं और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। इल्म खुद एतमादी की बुनियाद है। जब इंसान इल्म हासिल करता है तो उसमें खुद एतमादी पैदा होती है, उसे अपनी सलाहियतों पर भरोसा होता है और वो चैलेंजेस का सामना करने से घबराता नहीं। एक आलिम शख्स किसी भी महफिल में बाविखार तरीके से बात कर सकता है, अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है और दूसरों को खायल कर सकता है। ये खुद एतमादी उसे ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी की तरफ ले जाती है। इल्म अखलाकी इकदार का सर चश्मा है। इल्म सिर्फ हकायक का मजमुआ नहीं, बल्कि ये इंसान को अखलाकी और रूहानी बुलंदियों पर भी ले जाता है। तालीम हमें दूसरों का एहतराम करना, इंसाफ पसंद होना और माशरती ज़िम्मेदारियों को समझना सिखाती है। ये हमें तंग नज़री से आज़ाद करके वसी नज़री अता करती है। एक तालीम याफ्ता माशरा अखलाकी तौर पर ज़्यादा मजबूत होता है और उसमें जराइम की शराह कम होती है। इल्म आज़ादी का रास्ता है। इल्म इंसान को ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद करता है। ये उसे तासुबात, दखियानोसी ख्यालात और बेबुनियाद अखायद से निजात दिलाता है। एक बाइल्म शख्स अपने फैसले खुद कर सकता है और किसी के दबाव में नहीं आता। इल्म की आज़ादी उसे नई सोच, नए अफकार और नई राहें तलाश करने पर उकसाती है। इल्म इंसानियत की खिदमत का ज़रिया है। तारीख के औराख गवाह हैं कि इल्म ही वो क़ुव्वत है जिसने इंसानियत की सबसे ज़्यादा खिदमत की है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंसदान, असातिज़ा, ये सब इल्म के ज़रिए ही इंसानियत की फलाह के लिए काम करते हैं। बीमारियों का इलाज, नए टेक्नोलॉजी की ईजाद, गुरबत का खात्मा और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, ये सब कुछ इल्म के बग़ैर मुमकिन नहीं। इल्म नस्लों की तामीर करता है। एक तालीम याफ्ता फ़र्द न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی ایک مضبوط بنیاد فراہم

0: फ्राहम करता है। वालिदैन जो इल्म की अहमियत को समझते हैं वो अपने बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हैं, और इस तरह इल्म की ये रोशनी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रहती है। ये इल्म ही है जो कौमों को मजबूत बनाता है और उन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करता है। इल्म एक ना ख़त्म होने वाला ख़जाना है जो हमें हर रोज़ नई बसीरतें अता करता है। याद रखिए, दुनिया की तमाम मादी दौलत एक दिन फना हो जाएगी, लेकिन इल्म की रोशनी हमेशा बाकी रहेगी। आइए हम सब इस कीमती दौलत को हासिल करने में कोई कसर न छोड़ें और उसे दूसरों तक पहुंचाने का फ़र्ज़ अदा करें। यही वो रास्ता है जो हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी से हमकिनार करेगा।
1: दोस्तों, अभी आपने सुना हर्फ ताबिंदा तहरीर पेश किश थी नूरुद्दीन साहब की। दोस्तों, इल्म इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। यकीनन इल्म ही वो ताकत है जो कौमों को तरक्की देती है। एक तालीम याफ्ता इंसान माशरे के लिए कीमती सरमाया होता है। तो आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब सुनते हैं प्रोग्राम मत सहल हमें जानों में नसीरुद्दीन मौलवी नसीरुद्दीन हाशमी की दखनी अदब में खिदमात क्या हैं, इस पर एक टॉक सुनते हैं। तहीर व पेशकश है मोहम्मद शाहिद अली की, लीजिए समात कीजिए।
2: मौलवी नसीरुद्दीन हाशमी, असल नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद अब्दुल बारी, खलवी नाम नसीरुद्दीन हाशमी, वालिद मोहम्मद अब्दुल खादर रजिस्ट्रार बल्दा और वालदा उम्मतुल खादर बदरुन्निसा। इनकी पैदाइश 17 रमज़ान 1312 हिजरी मुताबिक 15 मार्च 1895 बरोज़ जुमा हैदराबाद दक्कन में हुई। तालीमी काबिलियत मद्रास यूनिवर्सिटी से मुंशी फाजिल और मुंशी मौलवी आलिम दारुल उलूम हैदराबाद में हुई। 1920 ईस्वी में दफ्तर दीवानी व माल सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस से मुलाजिमत का आगाज़ हुआ और तरक्की करते हुए मददगार नाजिम रजिस्ट्रेशन बने। आखिर रजिस्ट्रार बल्दा की हैसियत से 1950 ईस्वी में 55 साल की उम्र में वजीफ़ हुस्न खिदमत पर सुबुकदोश हुए। हाशमी साहब ने 1953 ता 1957 ईस्वी में 5 साल तक तारीख आज़ादी हिंद के सिलसिले में रिसर्च स्कॉलर के तौर पर काम किया। हुकूमत हैदराबाद ने इस सिलसिले में जो रिकॉर्ड शाये किया था, इसकी पहली दो जिल्दों में हाशमी साहब का फराहम करदा मवाद तकरीबन 1200 सफहात पर मौजूद है। अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ 1921 ईस्वी में इनके हकीकी मामूज़ाद बहन ज़ुबैदा बेगम से हुआ, जिनके वतन से एक लड़का ज़हीरुद्दीन हाशमी और 4 साहबजादियाँ सफ़िया हाशमी, आफ़ीफ़ा हाशमी, खतीजा हाशमी और सबिया हाशमी तवल्लुद हुई। 1928 ईस्वी में हुकूमत हैदराबाद ने इन्हें दक्षिणी तहक़ीक़ात के लिए यूरोप रवाना किया और हाशमी साहब एक साल लंदन, स्कॉटलैंड, फ्रांस और इटली में क़याम करके दक्षिणी मवाद और रिकॉर्ड हासिल किया और उसे यूरोप में दक्षिणी मखतूतात के उनवान से भी शाये किया। अलावा इसके उन्होंने सैर व सियाहत में दिलचस्पी के बायस हिंदुस्तान भर के कई शहरों, मुतअद्दिद अज़ला और बेशुमार ताल्लुक़े देखे। उनकी वालदा के इसरार पर उनके हमराह इराक़, बसरा, बगदाद, काजमीन, करबला और नजफ अशरफ भी गए। इनके उम्र के आखिरी अय्याम में उन्होंने कराची और लाहौर का भी सफ़र किया। इनके घर का माहौल इल्मी था, इसलिए उनको बचपन ही से रदीफ़वार अशार जमा किए। इस किताब का नाम उनके वालिद ने गुलजार नसीरी रखा। फिर उन्होंने 1911 ईस्वी में हालात भोनगिर के नाम से किताब लिखी। इसी दौरान उन्होंने अल महबूब नवाब मीर महबूब अली ख़ान आसिफ सादस की सवान उमरी लिखी, जो इशात से कबल ही ममनू करार दी गई। ये तसनीफ़ उन्होंने 1915 ईस्वी में लिखी थी। इस तरह हाशमी साहब के जौहर निखरने शुरू हुए और अव्वलीन मतबूआ किताब दक्कन में उर्दू के नाम से 1923 ईस्वी में शाये हुई। अब तक इसके 9 एडिशन हिंदो पाक से शाये हो चुके हैं। इनकी तारीखी व तनकीदी अदब अब तक कई किताबें शाये हो चुकी हैं, जिनमें दक्कन में उर्दू, सलातीन दक्कन की हिंदुस्तानी शादी, हज़रत अमजद की शायरी, मद्रास में उर्दू, मखालात हाशमी, दक्कनी हिंदू और उर्दू, दक्कनी कदीम उर्दू के चंद तहकीकी मजामीन हैं। दक्कन की तारीख से इन्हें ख़ास लगाव था, इसलिए इनके रिशात कलम से تاریخ عطیات آصفی، تذکرہ دارالعلوم، جلوہ زار۔

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जामे सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, पुराने नगमे हमें वाकई माजी की उन वादियों में ले जाते हैं जहां हम सब कुछ भूल जाते हैं और एक नई दुनिया में खो जाते हैं। ख़ास तौर पर जब महबूब का ज़िक्र हो तो इंसान नज़रों, जुल्फ़ों और महबूब की अदाओं में खो जाता है। नज़र की बात की जाए तो किसी शायर ने कहा है, तुम्हारी आँखें उन आँखों की बात करती हैं, गरीब हो गए जिनकी तलब में शहज़ादे। इस खूबसूरत नगमे के बाद आइए नगमों के सफ़र को

0: आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा।
1: न झटको जुल्फ से पान

दोस्तों, यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरेले गाते जा में सुन रहे हैं दिलकश और ख़ूबसूरत फिल्मी नगमे। अभी आपने फिल्म शहनाई से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत सुना। दोस्तों, बात मोहब्बत की हो या ज़िंदगी में किसी और चीज़ की, इंसान को कई बार चैलेंजेस का सामना करना

करना पड़ता है और हम उन चैलेंजेस को फेस करके ही आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक बात नज़रों की है तो इंसानी ज़िंदगी में नज़र का बड़ा अहम रोल होता है। किसी की नज़र में उठना, किसी की नज़र में गिरना, ये दोनों बड़ी अहम बात है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अगर ठोकर से गिरता तो संभलता, अगर ठोकर से गिरता तो संभलता, गिरा है वो ज़माने की नज़र से। जी दोस्तों, फिल्म नगमों का ये सफ़र जारी है और इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में आप सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। अभी फिल्म दिल से का आपने ये नगमा सुना सुखविंदर की आवाज़ में। दोस्तों, एक इतना मशहूर नगमा है, इसका अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा, और ये इतना म्यूज़िकल है, म्यूज़िकल नगमा था कि आप बिल्कुल थिरक रहे होंगे। तो फिल्म नगमों का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक ऐसा नगमा जिसमें एक लड़की की कुछ इस तरह से तारीफ़ की गई है कि शायर ने अपना कलम तोड़ दिया है।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में आप सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, ये फिल्म मोहरा का गीत आपने सुना, बहुत मशहूर गीत है जो अभी आपने सुना, ना कजरे का फूल, और इसे गाया था पंकज उदास ने। दोस्तों, फिल्मी गीतों का ये हमारा सफ़र जारी है, लेकिन हम इसके साथ ये भी बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर जब हम कामयाबी हासिल करने लगते हैं या करने वाले होते हैं, तो हमें लोगों के तंज, तनकीद और छींटाकशी का भी शिकार होना पड़ता है। लोग कुछ जो है टॉन्ट कसते हैं और तंज करते हैं, तो ऐसे मौके पर हमें चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का सबसे बड़ा इलाज इग्नोर है, और आपका इग्नोर करना ही आपकी कामयाबी और आपके आगे बढ़ने में सबसे अहम साबित होगा। तो फिल्मी गीतों के सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और गीत सुरीले गाते जा में खूबसूरत फिल्मी नगमों का सिलसिला भी जारी है। मुझे उम्मीद है कि आप इन नगमों से ज़रूर लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे होंगे। अभी आपने फिल्म कभी कभी का ये लाजवाल और मशहूर गीत सुना। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में आपको बता दूं कि फिल्म की कहानी मोहब्बत, जुदाई और रिश्तों के जज्बात के गिर्द घूमती है।

इस फिल्म के गाने और शायरी आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। और जुगाना या नगमा या गीत जो अभी आपने सुना, उस गीत का तो कहना ही क्या, अभी भी लोग उस गीत को सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो इस नगमे के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और गीत।

दोस्तों, नगमों के इस सफ़र के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और खूबसूरत नगमों के तहत सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जामे सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, मोहब्बत पे किसी का भी इख्तियार नहीं होता है, चाहे वो परदेसी हो या ना हो, मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है। अगर मोहब्बत पे इख्तियार होता तो दुनिया में इस तरह की कहानियां जन्म नहीं लेती जिसे सुनकर इंसान हैरान परेशान भी होता है और खुश भी होता है। तो मोहब्बत कब, किससे, कहाँ और कैसे हो जाए कोई नहीं बता सकता, लेकिन परदेसियों से मोहब्बत होने के बाद बिछड़ना और जुदाई का जो एक दर्द होता है वो इंसान को हमेशा तकलीफ देता रहता है। तो फिल्मी गीतों के इस सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप गीत सुरीले गाते जा प्रोग्राम में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। अभी जो आपने गीत सुना वो फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का मशहूर गीत है। ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे मशहूर रोमानवी फिल्मों में शुमार होती है। आपको याद होगा कि इस फिल्म में शाहरुख और काजोल की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया था और ये फिल्म कई साल तक सिनेमा घरों में चलने का रिकॉर्ड भी रखती है। अगर इस फिल्म से जुड़ी कोई याद आपकी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो नगमों के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

बहुत ज़्यादा होता था, और ख़ास तौर पर जब सरहद पे मामूर फौजियों की बात हो तो कहना ही क्या। तो दोस्तों, ख़त का ज़माना भी क्या ज़माना था। आपको भी उन दिनों की कुछ यादें आपके दिल में भी करवटें बदल रही होंगी। तो फिल्मी नगमों के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में मैं और मेरी आवारगी, ये बहुत ही शानदार कव्वाली।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। प्रोग्राम है गीत सुरीले गाते जा। दोस्तों, आज ज़माना बहुत तेज़ रफ्तार हो चुका है। मैसेजिंग, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ज़रिए हम एक दूसरे की खैरियत बहुत जल्द जान लेते हैं। लेकिन याद कीजिए उस ज़माने को, अब से 20-25 साल पहले, जब ख़त ही हमारा आखिरी ज़रिया, ए टेलीग्राम हमारा ज़रिया होता था किसी की खैरियत जानने के लिए, किसी के अपने बारे में कुछ बताने के लिए, और उसका इंतज़ार

दोस्तों, नुसरत फ़तेह अली ख़ान की इस शानदार कव्वाली के साथ ही फ़िल्म गीतों का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब पेश है प्याम शब, तहरीर व पेशकश है ज़ैदी साहब की।

0: गुरूर एक ऐसी बुरी आदत है जो इंसान को दूसरों से कमतर समझने पर मजबूर करती है। गुरूर में मुब्तला शख्स न सिर्फ दूसरों की तौहीन करता है बल्कि खुद भी तन्हाई और नाकामी का शिकार हो जाता है। हकीकत यह है कि गुरूर इंसान की खूबियों को छुपा देता है और इसे इज्जत के बजाय जिल्लत तक पहुंचा देता है। कामयाब वही है जो आजिजी और इनकिसारी अपनाए, क्योंकि आजिजी इंसान को बड़ा बनाती है जबकि गुरूर इसे गिरा देता है।
1: जी हाँ दोस्तों, गुरूर इंसान को हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। अहमद फराज ने कहा, शिकस्त दे गया उसका गुरूर ही उसको, मगर ना सामने उसके बिसात क्या थी मेरी। दोस्तों, इस खूबसूरत पैगाम के साथ ही प्रोग्राम नए रंग इख्तिताम पसीर होता है। अगली बज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी।

जी दोस्तों, नए रंग प्रोग्राम यहीं इख्ताम पजीर होता है। अगली बज़ में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अब से कुछ देर बाद ही दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार

0: की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in, deep dive into each of those aspects.
1: Absolutely. Mr. Tandon.
2: Modi sarkar ne jo sudhar karyakram liye pichle 12 saal mein, usme jo madhyam varg ki arthik utthan mein bahut mahatvapurna bhumika nibhai hai. Tax mein chhoot, GST ka saralikaran, digital kranti, housing subsidy, jaise bade sudharon se madhyam varg ki bachat badhi hai, unke paas jo disposable income badhi hai, aur usse unka jeevan star bhi upar utha hai. Agar main kuch cheezon ki baat karun, jaise humne baat ki, तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा. जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है, और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत. तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वनिधि योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया.
1: जैसे भी शरद जी ने
2: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है. और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है.
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी, इनिशिएटिव्स की, उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो there has been a significant expansion of the middle class in the last 12 years with more than 25 crore people exiting multidimensional poverty and entering the new middle class. How big an achievement would do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
0: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than, Anubha, the population of many of the countries around the world. और देखिए हुआ क्या कि पॉवर्टी इंडेक्स की जो डेफिनेशन बदला गया, यू नो वी चेंज द डेफिनेशन, बिकॉज आप पॉवर्टी को पहले कैसे डिफाइन करते थे, इतने रुपए रोज का. आई थिंक नीति आयोग केम आउट विद अ वेरी न्यू एंड अ प्रॉमिसिंग डेफिनेशन कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, यू नो ऑन न्यूट्रिशन, ऑन हेल्थ, आपके पास घर नहीं है, टुमारो यू गेट अ हाउस, यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन, नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीइंग, यू नो सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट. यू नो जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना, या वहां पर इधर उधर बैठ के, महिलाओं के लिए खासकर बहुत. सो आई थिंक नाउ देर आर टॉयलेट्स एट. सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड, अनुभव, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द नॉट दैट अ पर्सन हैज अ वेरी ह्यूज बैंक बैलेंस, बट ही इज एबल टू अफोर्ड एंड लिव अ लाइफ स्टाइल विच एनी अदर नॉर्मल मिडिल क्लास लिव्स. सो आई थिंक दैट हैज बीन द पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट पॉवर्टी, बिकॉज दोज पीपल financially fine, they may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities.
0: Absolutely.
1: Which is everybody's right and which should they should get.
0: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time, and today they feel that these were basic amenities which I was lacking, and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, you know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arbab, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just named all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analyst, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact har varg ko samaj

0: कि उसने फायदा पहुंचाया और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती, क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं, इससे लोगों की इनकम। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि मुझसे जब लोग पूछते हैं, क्योंकि होता क्या जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती हैं वेलफेयर स्कीम, तो यू टेक इट इन योर स्टेड, आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था भाई, ये तो मेरा हक है वगैरह वगैरह, ऐसे ख्याल आते हैं। पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं? तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकॉनमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion। तो अगर इकॉनमी डबल हुई है तो इकॉनमी तो हमको और आपको मिला के ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पीपल लाइक अस, सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे।
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी। तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
2: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है, और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं, आपने रोटी, कपड़ा, मकान की बात की। वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है, और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो GDP के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी GST, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके PLI योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
1: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें, उन्होंने और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए, जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है?
0: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अनुभा। देखिए गवर्नमेंट, यू नो, एज एन एम्प्लॉयर, सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभा, वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट। टूडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया, यू नो, पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इमेमोरियल, सो वॉट इज न्यू? येस, देयर वाज समथिंग न्यू बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द यूथ ऑफ द कंट्री और द यूथ इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री गॉट एक्टिवेटेड, a lot of youngsters, and today just on Startup India there are 2 lakh plus registered startups, and you know, you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed, and government has created a startup fund where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so here government became an angel, right. And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, आई थिंक

0: into health insurance, is going into insurance, is going into their retirement planning as well. And, you know, it'll be unfair, Anubha, if when we talk of tax and we don't talk of the tax savings made by GST. Somebody asked me that only 3 crore people in India pay tax. I said, no, every citizen of this country pays GST because that's indirect taxation. So this GST 2.0 has put money in the pockets of people. And because primarily we are a consumption-driven economy, 55 to 60% of our economy comprises of when me and you and Mr. Tandon goes and buy goods from the shopkeepers, from service providers. So I think that has taken a big boost. And in the current scenario, when global economy is facing challenges, it is the Indian consumption, Anubha, which is driving the growth of the country.
1: Let's move on to the next, you know, area which I think has impacted the lives of the middle class in a very significant manner, which is digitization. And we all know that Prime Minister Modi is a big votary of digitization. So what role has digitization played in the empowerment of middle class? Would you say that initiatives such as Aadhaar or even, you know, DigiLocker or even Umang, I'm just giving some few examples, that they have not only made public services mobile and paperless, but they've also in a way deepened the trust of the people in the government systems, Mr. Kohli?
0: I think it has brought the banking system, Anubha, in the pockets of people.
1: Financial inclusion?
0: Absolutely. You know, Jandhan Yojana, more than 56 crore accounts. And these were the people who probably thought that banks are always a dream for us. You know, they used to keep their money, you know, under the mattresses and so on. So today, all that money is in the bank and a very substantial deposit is there. I think 25 lakh crore rupees every month, 300 lakh crore rupees of transactions happening in a year.
1: Yes.
0: I think this has been transformational. And a lot of countries around the world now want to emulate that example. So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
1: Ashok ji, aap kuch
2: kehna chahte hain? Yeah, main ye kehna chahta hoon ki ye Janadhan, Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikdi hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है. सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है. दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है. ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ है.
1: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात करें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है. पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
0: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया. बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ कर
1: डिजिटल डिवाइड, जिसको
0: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था. बिकॉज दीस पीपल इन द विलेज, अनुभव, दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन. टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज, आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड इज प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन. एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग. प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. कैसे ये कोविड में हम करते, पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती. बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ. आज भी प्रधानमंत्री जी, हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है.
1: जो पिछले 12 सालों में काम
0: जो काम किया है उसके आधार पर उन्होंने बोला. उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे. सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर. मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाकर रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं. दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन.
1: अशोक जी, आप कुछ कहना?
2: मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है. तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया

0: किया गया
1: जी
0: सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम
1: जी
0: गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है।
1: We have seen in the last 12 years, since 2014, when NDA government under Prime Minister Modi, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
2: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything. For example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours an Uber for a 200-kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years. I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Uran, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people. कि हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगी बैठूंगा। आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाए, आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा। अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है। छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे। आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी, अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है। आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट में पहुंच रहे हैं, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल। द थिंग्स वी यूज्ड टू वॉच इंटरनेशनली, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में। सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी विच यूज्ड टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री।
1: एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक। जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान पर, अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अशोक जी, पहले आपसे।
0: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं, उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है, और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड, अनुभव, रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें, और

0: आज उसको इस परिपेक्ष में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं, क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था, क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रेवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
1: यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। वुमेन यू नो आर द बैकबोन ऑफ एनी मिडिल क्लास फैमिली। व्हाट इन योर opinion in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse har vargh ko hua hai, lekin vishesh taur se mahilaon aur kisanon aur yuvaon se jude hue jo hain. Ab aap dekhiye, agar hum बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी मिली, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजना, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। I find lot of women, as Mr. Tandon said, that you know, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है, जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है, और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से, महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है, और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के

0: भी आ रहे
1: बिल्कुल
0: हैं। तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें, तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है। और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास, वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है, उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
2: देखिए, जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूं,
1: जी
2: लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के
1: बिल्कुल
2: विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, इफ यू टेक इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, यू टेक इन द वर्ल्ड ऑफ इनोवेशन, यू टेक इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेस, यू टेक इन द वर्ल्ड ऑफ एनी

0: sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything. I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News On Air. This program is also available on our YouTube channel, News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने। गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है आज अर्पना। 11:46 हो चुके हैं, तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं दो मधुर गीतों के साथ। पहला गीत होगा मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में। संगीत जो है इसका ओपी नैयर का दिया हुआ है। फिल्म का नाम है 12 o'clock। और इसके बाद आप सुनेंगे अगला गीत जो लता जी की आवाज में होगा और इसमें संगीत है शंकर जयकिशन का। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

11:54 और 51 सेकंड हो चुके हैं. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. गीत मेरे मनमीत. अगला गीत आप सुनेंगे शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध है, शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत है, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में होगा ये गीत. फिल्म का नाम है चोरी चोरी.

0: मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
1: तो बताइए फिर कि हमें पूछना है ये नहीं पूछना कि आप हमारे कौन हैं। ये पूछने की ज़रूरत तो हमें पड़ती ही नहीं है क्योंकि हम हमेशा आपके साथ रहते हैं और ऐसे ही दिन रात आप भी हमारा साथ देते हैं क्योंकि ये है आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इसी गीत के साथ अर्पना को दें इजाज़त एफएम गोल्ड पर। अब आप सुनेंगे समाचार। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने इसे योगासन के वैश्विक खेल मानचित्र पर महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

0: और आयोजकों तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय संबंधी केंद्रीय सलाहकार समिति की नई दिल्ली में उच्च स्तरीय राष्ट्रीय बैठक हुई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए योजना के वांछित परिणाम के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल पर बल दिया। उन्होंने बताया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक आकांक्षी अनुसूचित जाति समुदायों तक पहुंचने के लिए पीएम अजय योजना का दायरा विस्तारित किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर दो दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मिलेंगी। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel or ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, "This is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers."
2: ATF price stabilization fund mein
3: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
2: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
1: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Regional Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Prime Minister Narendra Modi has stated that yoga is gaining tremendous popularity across the world. In a social media post, the Prime Minister said that he will join the first World Yogasan Sports Championship 2026 virtually tomorrow. The championship will be held in Ahmedabad, Gujarat. Mr. Modi said the platform has brought together yoga enthusiasts from around the world. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar co-chaired the 10th India-Laos PDR Joint Commission meeting with Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Laos People's Democratic Republic, Thong Sawan Phomvihan, in New Delhi. During the meeting, both sides held detailed discussions on various aspects, including trade and investment, health, energy, digital connectivity, development partnership, capacity building and culture. UK Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs, Yvette Cooper, arrived in New Delhi on a two-day visit to India. Ms. Cooper is scheduled to call on Prime Minister Modi tomorrow. She will also meet External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar tomorrow. National Payments Corporation of India has officially partnered with

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन सकते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिकांत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आपने फिल्म राजपूत से किशोर कुमार की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत सुना। इन आंखों के साये में जरा आराम तो कर लेने दो, इन आंखों के साये में जरा आराम तो कर लेने दो, थक चुकी हूं दुनिया की धूप में चलते चलते।

अभी आपने हेमलता की आवाज में फिल्म अखियों के झरोके से ये गीत सुना। कहीं दूर तक चलना था, कहीं दूर तक ही चले आए। कहीं दूर तक चलना था, कहीं दूर तक ही चले आए कि इस दिखावे की दुनिया से हम बहुत परे हो गए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है ऋषिगंधा और मैं हूं आपके साथ अंजू। ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने आपको गीत सुनाया था उसे गाया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम था दूसरा आदमी।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में फिल्म ड्रीम गर्ल से ये गीत सुना। तुमसे मिलकर जाना कि जिंदगी क्या होती है, तुमसे मिलकर जाना कि जिंदगी क्या होती है, वरना वरना तो अंधेरे में भटकती हर राह सुनी होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले पहले विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। श्री शाह के दौरे के सिलसिले में राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय प्रशासनिक और सुरक्षा बैठक आयोजित की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय

परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पोस्वान को पराजित किया। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और लेकर आई हूं कार्यक्रम गीत सुहाने। तो रहिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में, सुनेंगे बेहद ही मधुर गीत। शुरुआत कर रही हूं फिल्म स्वामी से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

तेरी यादें तेरी बातें बस तेरे ही फसाने हैं। तेरी यादें तेरी बातें बस तेरे ही फसाने हैं। हाँ, कबूल करते हैं कि हम तेरे दीवाने।

मेरी नजर से ना देखना कभी खुद को, मेरी नजर से ना देखना कभी खुद को, उम्र गुजर जाएगी तुम्हें नजर उतरवाने में।

बंद आंखों से भी दिखता है उजाला तेरा, बंद आंखों से भी दिखता है उजाला तेरा, पर लोग कहते हैं कि ये सोए हैं, हम सोए कहाँ हैं, जागे हैं हम।

तेरी मदहोश नजरों के जादू का असर गहरा सा हुआ है, तेरी मदहोश नजरों के जादू का असर गहरा हुआ है कि होश में होकर भी ये दिल मुकम्मल मदहोश हुआ है।

अभी आपने कुदरत फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत सुना। न जाने कब तेरी आदत सी लग गई, हम तो यूं ही हर रोज मिला करते थे। तूने तो कभी इजहार भी ना किया, न जाने कब हम तेरे आशिक बन गए।

तुम जमाने के हसीन नजारे देखो, हमारी आंखों को तो बस तुम्हारा दीदार चाहिए। बेशक दुनिया दीवानी है खूबसूरत नजारों की, और हमें तो बस तुम्हारा मासूम चेहरा दिखना चाहिए।

तेरी सूरत के सिवा कोई मंजर नहीं भाता है, तेरी सूरत के सिवा कोई मंजर नहीं भाता है, अब तो ख्वाबों में भी कोई दूसरा नहीं आता है। इस कदर तड़प है दिल में तुम्हें देखने की, आए ना देखूं तो उसमें भी तेरा अक्स नजर आता है।

कुछ तो भी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। दो बजकर 10 मिनट पर रात सुन मेरे घर पर फिर से आपके साथ रहेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जागरूकता बढ़ाने, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन मजबूत बनाने, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI ने कंबोडिया में UPI भुगतान सुविधा आरंभ करने के लिए कंबोडिया के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक ACALEDA बैंक के साथ साझेदारी की है। भारत आने वाले कंबोडियाई नागरिक जल्द ही अपने घरेलू बैंकिंग और डिजिटल भुगतान ऐप का इस्तेमाल कर पूरे भारत में लाखों UPI QR कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे के दौरान पुष्पबंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे।

और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो स्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

2:11 और 10 सेकंड, मैं हूँ आपके साथ अंजू। समय हो बता दिया है और आगे सफर बढ़ाते हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं रात सुरमई।

हम तो अजनबी थे, कब खास हो गए पता ही नहीं चला। ये इश्क है, ये इश्क है, बस इसे यूं ही हो जाने दो।

रूठेगी अगर तकदीर तो उसे भी मना ही लेंगे, रूठेगी अगर तकदीर तो उसे भी मना ही लेंगे, और वादा है तुमसे हर हाल में एक ना एक दिन तुम्हें हम अपना बना ही लेंगे।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, सिर्फ FM गोल्ड पर।

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यूनिंग किया है उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ अंजू, कार्यक्रम है रात सुरमई।

जुबान से जो ना कह पाए वो नजरों का फसाना है, जुबान से जो ना कह पाए वो नजरों का फसाना है, और तुम्हें ही छुपकर तुम्हें ही देखना ये इश्क का बहुत पुराना बहाना है।

रात का अंदाज कुछ मध्यम सा होने लगा है, दिल तुम्हारी यादों के समंदर में खोने लगा है। अब भी आ जाओ कि अंधेरा होने को है, तुम्हारे बिना ये दिल फिर से रोने को है।

ये जादू तो यूं ही बरकरार रहेगा क्योंकि स्टूडियो में आ चुकी हैं माधुरी हमराही लेकर. मुझे अनुमति दीजिए और जल्द ही आपसे मिलूंगी. अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, ये भी आपको बताते चले क्योंकि माधुरी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि जल्दी से ये सीट खाली हो तो मैं बैठूं. तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, सुनिए समाचार, उसके बाद सुनेंगे आप 3:10 से हमराही. आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना में हुई लापरवाही की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: पश्चिम बंगाल विधानसभा में रतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आज ओलावृष्टि के साथ तूफान की आशंका है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो स्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही का ये सफर लेके माधुरी है आज की रात आप सभी के साथ। नमस्कार।

चलो मीत चलें दिन और रात के सरहद के पार, जहां तुम रात को दिन कहो तो मैं मुस्कुरा दूं, और जहां सूरत से तुम्हारी दोस्ती रहे और चांद से मेरी नाराजगी। चलो मीत

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। समय बता दें, रात्रि के 3:22 और हो गए हैं पूरे 15 सेकेंड।

हमसे जाओ ना बचा कर आंखें, यूं गिराओ ना उठा कर आंखें, खामोशी दूर तलक फैली है, बोलिए कुछ तो उठा कर आंखें।

खुले आसमां का पता चाहते हैं, परिंदे हैं हम और क्या चाहते हैं। उड़ेंगे हवा में खुद के परों से, उड़ानों में सारी फजा चाहते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर हमराही।

0: AIR at 90.
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जब दिल किसी के प्यार में खो जाए तो फिर सच में जिया कहाँ लगता है। आवारा है गलियों में मैं और मेरी तन्हाई, जाएं तो कहाँ जाएं, हर मोड़ पे है रसवाई। ये फूल से चेहरे हैं, हंसते हुए गुलदस्ते, कोई भी नहीं अपना, बेगाने हैं सब रस्ते। राहें हैं तमाशाई, राही भी तमाशाई, मैं और मेरी तन्हाई, और इस तन्हाई में ये मोहब्बत का सबब।

0: रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहरे में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को चुपके से दवा मिल जाए। और इस शेर की ही तरह अगला गीत है हमारा कि कहते सुनते कब ये रात बीत जाए, कब कोई बात बन जाए, कब कोई बात बिगड़ जाए, और कब कोई बात बिगड़ के फिर समर जाए।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना।

जी हाँ, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, और कहते सुनते हमराही का ये सफर भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए।

और इसी के साथ हमराही का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना में हुई लापरवाही की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस दुर्घटना पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। बयान में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और भारत सरकार और लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम अरुणिमा के साथ मैं हूं माधुरी। नमस्कार।

एक कविता की कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं जो यकीनन दिल को छू लेंगी। जानती हूं जीवन मैदानों से ज्यादा विस्तृत है, हथेलियों से ज्यादा सुंदर है और धातु से ज्यादा कठोर है। जीवन का अनुवाद किसी भी भाषा में सिर्फ जीवन है। जीवन विन्यास है ऋतुओं का, नदियों का, उन रास्तों का जिनसे होकर हम काम पर जाते हैं। वो मुझे प्रिय हैं शब्दों से ज्यादा, आंसुओं से ज्यादा।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

एक और छोटी सी कविता है जिसे लिखा है नरेंद्र वर्मा ने, आप तक पहुंचा रही हूं। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 4:31 और हो गए हैं पूरे 47 सेकंड। ये सफर है अरुणिमा का।

आनंद परम की ये कुछ पंक्तियां हैं आपके लिए। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा।

दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है।

और अरुणिमा के इस आखिरी पड़ाव पर एक बहुत ही प्यारी और जानी मानी कविता आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। सोहन लाल द्विवेदी की लिखी ये कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में रुकी विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जबकि बाकी का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस दुर्घटना पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। बयान में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और भारत सरकार तथा लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में उलानबतार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। 4 दिन की प्रतियोगिता में भारत की ओर से पुरुष फ्रीस्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धाओं में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, "This is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers."
2: ATF price stabilization fund mein
3: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
2: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप। रात का अंधेरा छटने लगा है, नई सुबह आने को है। आइए स्वागत करते हैं इस सुंदर सी नई सुबह।

रात चाहे कितनी भी अंधेरी या मुश्किल क्यों न रही हो, सुबह का सूरज हमेशा नई उम्मीदों के साथ उगता है। कल जो गलतियां हुई या जो काम अधूरे रह गए, उन्हें भूलकर आज एक नई शुरुआत करने का दिन है। ये सोचना कि आज का दिन मेरा है, आपको भीतर से मजबूत कर देगा।

कि आपको जीवन का एक और खूबसूरत दिन मिला है। आपके पास जो कुछ भी है, परिवार, रहने के लिए घर, सेहत, सांसें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें। कृतज्ञ रहने से मन में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक चीजें जो हैं वो हमारी ओर बढ़ती हैं।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और ये सफर है भोर सुहानी का। आपको पता है आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं। सुबह खुद से कहें कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सक्षम हूँ और मैं आज के दिन के हर चुनौती का सामना मुस्कुराकर कर सकता हूँ। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं ना, तो मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं और मुश्किलें भी आपके लिए आसानियाँ बन जाती हैं।